0: ये है लाइका गोल्ड। साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान, देखिए दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सीइंग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 02085748410, दैट्स 85748410। साफो ट्रेवल, at all protected.
1: Packed for the trip? Gifts? Passport?
2: Check. Just dreading that phone bill when I get back from India. Roaming is a nightmare.
1: Mate, you're doing it wrong. Just get Simzy.
2: Simzy?
1: It's an eSIM app. You buy a data plan for India starting at just $5. No swapping plastic SIMs. No kiosks.
3: Plans for Asia, Europe and beyond. Search simzy.com. That's SIMZY.com. T's and C's apply.
0: Download the Leica Radio mobile app. Listen live and listen back to your favorite shows.
4: Sari Raat, Bollywood classics ka saath. Sirf Leica Gold.

एक ना हुक्मी बख्शीश एक हुक्मी सदा भुआई है। हुक्मे अंदर सबको बाहर हुक्म ना कोए, नानक हुक्मे जे बुझे ताहू मैं कह ना कोए। गावे को तान होवे किसे तान, गावे को दात जाने निशान। गावे को गुण वडियाईया चार, गावे को विद्या विखम विचार। गावे को साज करे तनखे, गावे को जी लै फिर दे। गावे को जापे दिसे दूर, गावे को वेखे हादरा हदूर। कथना कथी ना आवे तोट, कथ कथ कथी कोटी कोट कोट। देंदा दे लेंदे थक पाहे, जुगा जुगंतर खाई खाए। हुक्मी हुक्म चलाए राव, नानक विकसै वे परवाह। साचा साहेब साच ना।

विचार जानिए, नाल चले सब कोए, चंगा नाम रखाए के जस कीरत जागले, जे तिस नदर ना आवे ता बात ना पूछे के, कीटा अंदर कीट कर दोषी दोष धरे, नानक निर्गुण गुण करे गुणवंतिया गुण दे, तेहा कोई न सुजई, जे तिस गुण कोई करे सुनिए।

सुने हाथ वैसगा नानक भक्तां सदा विगास सुने दुख पाप का नास मन्ने की गत कही ना जाए जे को कहे पिछे पछताए।

होए जे को मन जाने मन कोए मन्ने मार्ग ठाक न पाए मन्ने पत्सियों प्रगट जाए मन्ने मग न चले पंथ मन्ने धर्म सेती सनबंध।

लख दरियाओ कुदरत कवन कहां विचार वारिया ना जावा एक वार जो तुद भावे साई बलिकार तू सदा सलामत निरंकार असंख जप असंख भाव असंख पूजा असंख तपताओ असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ असंख जोग मन रहे उदास असंख भगत गुण ज्ञान विचार असंख सती असंख दातार असंख सूर मोह पक्षार असंख मोन लिवलाय तार कुदरत कौन कहावी।

मूर्ख अंध गोर, असंख चोर हराम खोर, असंख अमर कर जाए जोर, असंख गलवड़ हत्या कमाए, असंख पापी पाप कर जाए, असंख कूड़े यार कूड़े फिराए, असंख मलेच्छ मल भक खाए, असंख निंदक सिर करे भार, नानक नीच कहे विचार, वारिया न जावा एक वार, जो तुद भावे साई वलिकार, तू सदा सलामत निरंकार। असंख नाव असंख थाव, अगम अगम असंख लो, असंख कहे सिर भार होए।

तेरे भगत रसाले। होर के ते गावन से मैं चितनावन, नानक क्या विचारे। सोई सोई सदा सच साहिब, साचा साची नाई है भी होसी।

नाहत जुग जुग एको वेश भुगत ज्ञान दया भंडारण घट घट वाजे नाद आप नाथ नाथी सब जाकी रिद सिद्ध।

देना जोर जोर ना जीवन मरण ना जोर जोर ना राजमाल मंसोर जोर ना सुरती ज्ञान विचार जोर ना जुगती छुटै संसार जिस हाथ जोर कर वेखे सोए नानक उत्तम नीच ना कोए राती रुती छित्ती वार पवन पानी अग्नि पाताल तिस विच धरती थाप रखी धर्मसाल तिस विच जी जुगत के रंग तिनके नाम अनेक अनंत करमी करमी होए विचार सच्चा आप सच्चा दरबार तिथे सोहन पंच परवान नदरी करम पवै निशान कच पका।

0: ये है लाइका गोल्ड 10:35 AM
1: travelhubworld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं by opening their third branch on 2 Ealing Road, Wembley. Find the best price on

0: बुक योर ड्रीम हॉलिडे। लाइका गोल्ड ट्रेवल हब world.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाई ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली। फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनी वेयर इन द वर्ल्ड ऑन ट्रेवल हब world.com। फ्लाइट एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता। कॉल ट्रेवल हब 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट ट्रेवल हब world.com।
1: ट्रेवल हब बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
0: एट ऑल प्रोटेक्टेड।
1: विजिट ट्रेवल हब world.com।
2: After a sold-out show at the Royal Albert Hall, Diwali Story, The Journey of Ram, a musical, now comes to OVO Arena, Wembley. Witness this spectacular live musical on Sunday, the 27th of September. A powerful stage retelling of the Ramayana. Original music, breathtaking dance, grand visuals and storytelling for every generation. Book now on DiwaliStory.com.
3: इल्फर्ड अब असली इंडियन फ्लेवर्स का मजा लीजिए।
4: बीकानेर वाला परंपरा भी
5: फेमस छोले भटूरे राज कचौरी मिठाई और बहुत कुछ आपका इंतजार कर रहा है। मिलते हैं 513-519 क्रैनब्रुक रोड गैंसिल इल्फर्ड IG26HA कॉल 07555-506015।
6: Location, location, location.
7: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
6: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas.
7: Located in Dubai, in a prime location for high appreciation.
6: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
7: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
6: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
7: To book, call our London office on 02039635757. Greens by Danube. Prime location.
6: High appreciation.
7: In Dubai.
8: 07300998823. नोट किया? किटी पार्टी, बिजनेस मीटिंग, कॉर्पोरेट इवेंट, फैमिली ओकेजन, बस व्हाट्सएप करें गॉडफादर एंड को बार एंड किचन को। सर्विस एक्सेलेंट, फूड अमेजिंग और एक्सपीरियंस ऐसा कि आप खुद भी आएंगे और दूसरों को भी रेकमेंड करेंगे। विवेक हाउस वॉटफर्ड, बुक ऑन व्हाट्सएप

0: Mamster पानी पूरी और पानी पूरी का पानी.
1: All Mamster products are nut free and made in Canada. Now available at quality food branches.
2: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका. अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत. 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ 1890 पाउंड से पूरी तरह फिटेड. और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी. तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 0208150 2025 और विजिट meraboiler.com. T's and C's apply. 10 days to Turkey, guaranteed departure on 18th September. Book early to avoid disappointment. Visit sonatours.co.uk or call 0208-951-0111.
3: Hello, London. The wait is over. Kalyan Jewelers invites you to the grand opening of our spectacular new showroom. Join us on Green Street, Upton Park this July 31st. Kalyan Jewelers, also at Belgrave Road, Leicester.
4: Leica Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan.
5: बजट टाइट पर ब्रांड का इम्पैक्ट बड़ा चाहिए. लाइका रेडियो और लाइका गोल्ड लाए हैं आपके लिए परफेक्ट पैकेज. रेडियो, डिजिटल या इवेंट, सब कुछ मिलेगा कस्टमाइज्ड. जल्दी करिए, कॉल नाउ 0207-132-1458 या लिखिए sales@laikaradio.com.
6: Time for listener of the week.
7: Hi, my name is Britesh and I'm the listener of the week on the Breakfast Show. I love listening into the Leica Radio Network because Gadril is the best. Listen to my playlist from Monday to Friday only on The Breakfast Show with Gadril on Leica Gold and Leica Radio Midlands.

0: इज लाइक अ गोल्ड। ट्रेवल हब वर्ल्ड डॉट कॉम कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाई ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली। फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनी वेयर इन द वर्ल्ड ऑन ट्रेवल हब वर्ल्ड डॉट कॉम। फ्लाइट एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता। कॉल ट्रेवल हब 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट ट्रेवल हब वर्ल्ड डॉट कॉम।
1: ट्रेवल हब बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
0: एट ऑल प्रोटेक्टेड।
1: विजिट ट्रेवल हब वर्ल्ड डॉट कॉम।
2: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208-507-7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
3: Experience an unforgettable evening of timeless ghazals. The Prince of Ghazal, the youngest ghazal maestro, Ranjit Rajwara. Performing live in London on Thursday, 30th of July at Harrow Arts Centre. Book your tickets now at harrowarts.com. Leica Radio Network listeners can enjoy 10% off using the promo code Leica Radio. Hurry, limited seats remain for this intimate live concert. Tickets start from just £25. The exclusive Radio पार्टनर लाइका रेडियो नेटवर्क।
4: व्हाटफुड में डिनर प्लान्स, थोड़ा क्लासी थोड़ा देसी।
5: तो आइए गॉडफादर एंड को विवेक हाउस बार एंड किचन।
4: फ्रॉम क्रिस्पी स्टार्टर्स, बटर चिकन, पनीर टिक्का मसाला से बिरयानी तक फ्रेश ब्रेड एंड रिफ्रेशिंग ड्रिंक्स, हर बाइट में लाजवाब फ्लेवर्स और वाइब बिल्कुल प्रीमियम।
5: फ्रेंड्स, फैमिली या स्पेशल नाइट आउट, इसे यादगार बनाइए। विजिट विवेक हाउस व्हाटफुड। कॉल 01923-227274. Book your table today.
6: Have you had a bereavement in the family? In times of sadness and grief, Om Funeral Care is there to help and support with all customs and rituals. At Canton Road in West London and Ilford in East London, Om Funeral Care's well-versed priests carry out all the rites and rituals in English, Hindi, Gujarati, Marathi, Tamil and other languages. Contact Kalpesh Patel on 0208-922-3344, a 24-hour line.

0: ते गोल गप्पियां दा पानी।
1: All Mamster products are nut free and made in Canada. Now available at Quality Food branches.
2: चाय ब्रेक हो या बिजी वर्क डे, सबको चाहिए एक परफेक्ट कप ऑफ चाय।
3: और अब रॉयल चाय लाए हैं स्मार्ट सॉल्यूशन फॉर योर बिजनेस।
2: गेट अ रॉयल चाय वेंडिंग मशीन फ्री, परफेक्ट फॉर कैफेज, रेस्टोरेंट्स, ऑफिसेज, शॉप्स, पेट्रोल स्टेशंस और कम्युनिटी स्पेसेस।
3: रिच ऑथेंटिक टेस्ट एवरी सिंगल टाइम।
2: रॉयल चाय, ब्रूड फॉर बिजनेस।
3: ईमेल नाउ info@royalchaivending.com। लिमिटेड ऑफर, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
4: Hello London, the wait is over. Kalyan Jewelers invites you to the grand opening of our spectacular new showroom. Join us on Green Street, Upton Park this July 31st. Kalyan Jewelers, also at Belgrave Road, Leicester.
5: SonaTours.co.uk, 14 days Canadian Rockies and Alaska cruise in 2027. Book before the end of July and get 600 off. Call SonaTours on 0208-951-0111.
6: When your daughter's wedding guest list is double-sided, enjoy every hand-clapping second of it. Be a step ahead with Barclays Premier, with our best savings rates. Barclays, backing your future. Eligibility criteria apply. T's and C's apply.
7: Like a Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan. Cool music for a super hot summertime on Leica Gold.

0: Let's return to the biggest hits back to back. Sponsored by TravelHubWorld.com. For the best service and unbeatable prices, visit TravelHubWorld.com. TravelHubWorld.com.
1: हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता.
2: Travel Hub.
1: At all protected.
0: Leica. Leica Gold. Officially London's number one Asian retro music station.
3: स्वागत है श्रोताओं का मनोरंजन की दुनिया में. माय नेम इज रवि शर्मा. दोपहर बाद एक बजे तक मैं आपकी सेवा में हाजिर हूं और भाई कार्यक्रम शुरू कर रहा हूं. मनोरंजन बात क्या है कि जान हथेली पर रखते हैं, क्या क्या कस्में खाते हैं, प्यार का रोग लगाने वाले जीते जी मर जाते हैं. मजनू के हिस्से के पत्थर लैला हंस हंस खाती है और लैला लैला करने वाले थल में जान गंवाते हैं, रेगिस्तान में जाते हैं. जिनको जिद हो प्यार बुझे ना, शीरी की अरमानों से दूध की नहर पहाड़ों में फरहाद से वो खुदवाते हैं. क्या कहने साहब, जहर भी हीरे पी लेती हैं और कैदों के बहलाने पर रांझा बनने वाले तख्त हजारे को ठुकराते हैं. क्या कुछ करते हैं साहब ये प्यार करने वाले. आइए आज प्यार करने वालों का चर्चा करते हुए कार्यक्रम शुरू करते हैं. आप भी तो उनमें शामिल हैं, हम भी प्यार करने वाले हैं.

0: Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
1: लीजिए साहब, SBI UK यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया UK का वो रेट पाउंड का बताने से पहले बता दें कि हमने भाई शुरुआत की दो गीतों से बैक टू बैक संगीत के तहत। पहला गीत हम प्यार करने वाले वाज टेकन फ्रॉम द फिल्म दिल। किसी ज़माने में इस फिल्म के गीतों ने बड़ी धूम मचाई थी। और साहब दूसरा गीत था ये जो चिलमन है, महबूब की मेहंदी थी, फिल्म रफ़ी साहब की थी आवाज़। और भाई राजेश खन्ना थे उस फिल्म में या कौन था, मैं पुरानी फिल्मों के बारे में सॉलिड जानकारी नहीं रखते हैं शर्मा जी, लेकिन वो था आई थिंक राजेश खन्ना ही रहे होंगे हीरो। पर गीत बहुत खूबसूरत थे इस फिल्म के, बहुत मीठे थे इस फिल्म के। तो साहब शुरुआत हो चुकी है और अब पाउंड का रेट नोट कीजिए। एक पाउंड के बदले SBI UK वाले दे रहे हैं हाउ मच, 127 रुपये 45 पैसे। यस, 127 pounds rupees and 45 paisas, एंड यू कैन ट्रांसफर वाया ब्रांच ऑनलाइन और बाय यूजिंग द योनो SBI UK मोबाइल App. Terms and conditions apply.
0: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
2: We hit
3: Leica Gold.
2: Us kids are mesmerized by the mundane, entranced by the everyday. Where grown-ups see a snail, we see a slippery shelled beast from the undergrowth. But around 1 in 5 young children have a sight condition that can get in the way of all that wonder. The good news is, if these are found early, they can be managed or corrected. So book your child a free eye test at Specsavers today. Find out more at specsavers.co.uk/kidstests.

0: प्यार करने वालों का रंग रूप बदल जाता है भाई, चेहरे पर कोई खास तरह की रौनक आ जाती है, आंखों में चमक बढ़ जाती है, होठों पर मुस्कान तैरने लगती है। भाई ये गीत सुना आपने, एंजॉय किया, कौन सुनवा रहे थे?
1: Feel good track brought to you by Dairy Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
3: Manoranjan with Ravi Sharma.
4: Like a gold.
0: Like a radio network. अब आप रवि शर्मा से आज के खास खास समाचार सुनिए। फ्रांस के शहर बोर्दो के पास जंगल में लगी भीषण आग को देखते हुए वहां आसपास के इलाकों से हजारों लोगों को सिक्योर ठिकानों पर पहुंचाया गया है। आग पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड के कर्मचारी लगातार कोशिश कर रहे हैं। फ्रांस के होम मिनिस्टर लॉरेंट नुनेज ने कहा है कि इलाके में हालात अब भी बेहद मुश्किल बने हुए हैं। उन्होंने बताया कि आग अनिश्चित दिशा में बढ़ते हुए बोर्दो की ओर बढ़ रही है, हालांकि अधिकारियों ने फिलहाल शहर को खाली कराने की संभावना को कम बताया है। भारत से आने वाली खबरों में, भारत की स्टार वेटलिफ्टर मीराबाई चनू ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में कॉमनवेल्थ गेम्स में महिलाओं के 48 किलोग्राम वर्ग में गोल्ड मेडल जीतने के बाद कहा है कि देश के लिए गोल्ड मेडल जीतने से ज्यादा खुशी की कोई और बात नहीं हो सकती। पीटीआई के मुताबिक मीराबाई चानू ने कहा कि मैं बहुत खुश हूं, कॉमनवेल्थ खेलों में ये मेरा तीसरा गोल्ड मेडल है, कुल मिलाकर चौथा मेडल। मेरी यात्रा 2014 के कॉमनवेल्थ खेलों से शुरू हुई थी जहां मैंने सिल्वर मेडल जीता था। CPIML लिबरेशन की स्टूडेंट संगठन आईसा की नेता नेहा बोरा ने बिहार में पेपर लीक मामले को लेकर मुजाहिरा कर रहे, प्रदर्शन कर रहे लोगों को गिरफ्तार किए जाने का आरोप लगाया है। उन्होंने आईसा के एक्स हैंडल पर एक वीडियो जारी करके कहा है कि वो बिहार पहुंचकर इस मामले को पूरे जोर शोर के साथ उठाएंगी। केंद्र सरकार पेपर लीक रोकने के लिए पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 2024 में बदलाव का बिल आज लोकसभा में पेश करने जा रही है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ये बिल पेश करेंगे। आप जानते हैं पेपर लीक को लेकर के भारत में स्टूडेंट्स के द्वारा एक बड़ा ज़बरदस्त प्रोटेस्ट किया गया, वो अब समाप्त हो चुका है, सरकार ने उनकी मांगें मान ली हैं, लेकिन इस आंदोलन में 22 स्टूडेंट्स ने अपनी जान गंवाई थी। स्कॉटलैंड के ग्लासगो में चल रहे कॉमनवेल्थ गेम्स के बॉक्सिंग मुकाबले में भारत के बॉक्सर जादूमणि सिंह ने पाकिस्तानी बॉक्सर सुमामा रहमानी के खिलाफ अपनी जीत कारगिल के फौजियों को समर्पित की है। जीत के बाद जादूमणि ने कहा कि आज कारगिल डे है और मैं अपनी जीत कारगिल हीरों को समर्पित कर रहा हूँ। जज ने मेरे पक्ष में 5-0 से फैसला दिया है, मैं दिखा रहा था कि भारत सबसे आगे है। आपको बता दें कि कॉमनवेल्थ खेलों में उन्होंने एक हाई वोल्टेज मुकाबले में पाकिस्तान के सुमामा रहमान को 5-0 से हराया है। सोनम वांगचुक को आज छुट्टी मिलने वाली है, वो अस्पताल में है, अस्पताल में अब उन्हें वही स्वास्थ्य सर्टिफिकेट दे करके आज छुट्टी दी जाएगी। लद्दाख रवाना होने से पहले उन्होंने एक बयान दिया है, उन्होंने कहा है कि अब वो दिन आ गया है जब मैं इस अस्पताल से डिस्चार्ज हो रहा हूँ, काफ़ी बेहतर महसूस कर रहा हूँ, मैं ठीक से खा रहा हूँ और अब मेरे बदन में जान भी आ रही है। मैं लद्दाख जाने से पहले राजघाट जाकर बापू को श्रद्धांजलि अर्पण करूंगा। आप लोगों को याद होगा कि ऐसे ही में जब स्विट्जरलैंड से मैं आया था तो राजघाट पर श्रद्धांजलि देने के बाद ही अनशन शुरू करने जंतर मंतर गया था। आपको बता दें कि राजघाट उस समाधि का नाम है जहां महात्मा गांधी जी की समाधि है। काकरोच जनता पार्टी ने जंतर मंतर पर हुए प्रोटेस्ट के वॉलंटियर मोहम्मद जुनैद को लेकर के एक बयान दिया है कि उन्हें सभी जरूरी कानूनी सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। CJP ने अपील किया कि उनके बारे में फैलाई जा रही गलत सूचनाओं और नफरत भरे प्रचार को रोका जाए। न्यूयॉर्क जाने पर गिरफ्तारी से जुड़े सवालों पर बेन्यामिन नेतन्याहू के का स्पष्टीकरण आया है। ये खबर के भाई बेन्यामिन नेतन्याहू को न्यूयॉर्क जाने पर गिरफ्तार कर लिया जाएगा, इस बारे में काफ़ी अटकलें लगाई जा रही थी, लेकिन प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने कहा है कि वो सितंबर में यूएन जनरल असेंबली में हिस्सा लेने न्यूयॉर्क जरूर जाएंगे। नेतन्याहू का यह बयान ऐसे वक्त आया है जब न्यूयॉर्क सिटी के मेयर जोहरान ममदानी ने अपने एक बयान में उन्हें गिरफ्तार करने की बात कही थी। हालांकि पिछले सप्ताह ममदानी अपने उस बयान से पीछे हट गए थे। उन्होंने माना था कि इंटरनेशनल क्राइम न्यायालय यानी कोर्ट आईसीसी की ओर से जारी गिरफ्तारी वारंट के आधार पर नेतन्याहू को गिरफ्तार करने का कानूनी अधिकार उनके पास नहीं है। रविवार को फॉक्स न्यूज से बातचीत में नेतन्याहू ने कहा कि वो ममदानी के पहले दिए गए बयान को लेकर चिंतित नहीं है, उन्हें बिल्कुल भी फिक्र नहीं है। इजरायली प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि ममदानी नफरत को बढ़ावा दे रहे हैं। ये थे आज के प्रमुख समाचार। समाचार समाप्त होते हैं।
1: This is the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands. Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.
5: The one and only one, Ravi Sharma, on your number one radio.

0: कितना प्यार करें, इतना प्यार करें, कोई क्वांटिटी बता सकता है? प्यार को तोला जा सकता है, मापा जा सकता है?
1: Tasty track of the hour, sponsored by Coca Noodles, is coming with more flavors and healthy option in a convenient bowl. Coca Noodles, quick and tasty noodles in 12 flavors.
2: ये है Like a Gold, 10:35 AM.
3: Holiday breaks are brought to you by South Hall Travel.
0: साउथ हॉल ट्रेवल याद दिला रहे हैं भाई कि FCDO द्वारा जो यात्रा पर के बारे में वार्निंग दी गई थी, कहते हैं वो वापस ले ली गई है। FCDO हैज़ लिफ्टेड इट्स एडवाइस अगेंस्ट ऑल बट एसेंशियल ट्रेवल टू दुबई। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल फॉर द मोस्ट कम्पेटिटिव दुबई डील्स। उनका फ़ोन नंबर है 02085748410 एंड दे आर एट ऑल प्रोटेक्टेड।
3: Breaks were brought to you by Southall Travel. Low prices for flights, hotels or holiday packages. Visit southalltravel.co.uk. Get all the latest travel updates for London at breakfast and drive.
4: Like a

0: और मेरे हम सफर आप हैं बहन भाई, आपसे भी यही दरखास्त है, रिक्वेस्ट है, अनुरोध है, कहीं चल ना देना छोड़कर। बरसों का साथ है, लंबी मुलाकात है, ये मेंटेन रखेंगे आप और हम। लता मंगेशकर और मुकेश जी के स्वर में आपने सुना गीत फिल्म मेरे हम सफर से।
1: ये है लाइका गोल्ड।
2: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: और नोट कीजिए उनके रेट्स, मैं बता देता हूँ। एक पाउंड के बदले दे आर गिविंग इन इंडियन करेंसी 127.81 रुपीस। पाकिस्तानी रुपए दे रहे हैं 369.94, श्रीलंकन 447.74, बांग्लादेश के टके जो है एक पाउंड के बदले 164.3 एंड अफगानी 88.65.
2: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKA. Download LemFi now. T's and C's apply.
3: Manoranjan with Ravi Sharma.
2: Gold Rate, brought to you by Pooja Sweets and Savories, PoojaSweets.com, or visitors in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
0: Sone ka bhav. नोट कीजिए साहब, सर्राफा बाजार में द गोल्ड इज ट्रेडिंग एट द रेट ऑफ 98.84 पाउंड्स पर ग्राम।
2: गोल्ड रेट वाज स्पॉन्सर्ड बाय पूजा स्वीट्स, वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटी वेजिटेरियन फूड सप्लायर्स, PoojaSweets.com, और विजिटर्स एट ईस्टहैम, हाउंसलो और क्राउली।
3: ये है लाइका गोल्ड।
4: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान
5: देखिए, दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सीइंग,
4: डेजर्ट सफारी,
5: यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम।
4: साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में लाके दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे।
5: तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410, दैट्स 8574-8410।
6: साफो ट्रेवल, at all protected.
7: Two businesses,
8: same town,
7: same service.
8: One appears on page one of Google,
7: the other doesn't.
8: Guess which one gets the customer?
7: The truth is brutal.
8: The first page of Google gets the business,
7: everyone else gets what's left.
8: So here's the real question:
7: when your customers search for what you sell, do they find you?
8: Visit heartyhanks.com and stop letting Google choose your competitors.
7: Hearty Hanks, the digital agency that doesn't play safe.
9: After a sold-out show at the Royal Albert Hall, Diwali Story, The Journey of Ram, a musical, now comes to OVO Arena, Wembley. Witness this spectacular live musical on Sunday, the 27th of September. A powerful stage retelling of the Ramayana. Original music, breathtaking dance, grand visuals and storytelling for every generation. Book now on DiwaliStory.com.
0: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं। परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं। 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए। फॉरन का फोन मिलाए 02088390880 और विजिट ragasan.com। लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन।
10: यू नो दैट क्लीन फ्रेश फीलिंग After brushing, Siddhayu toothpaste takes it to another level. Clove, neem, herbal actives, proper Ayurvedic care, but modern and premium. Fresh breath, healthy gums, no harsh chemicals. From the house of Baidyanath, with over 100 years of Ayurvedic legacy. Available at all quality food stores and other leading retail stores across the UK. Siddhayu, Ayurved that fits your life.
11: London, are you ready? Raga Events presents to you for the first time legend Udit Narayan and son Aditya Narayan performing live with Bade Mia Chote Mia this December.
12: पास आए।
11: One date, one show, Sunday the 20th of December at the Ova Arena, Wembley, London.
12: पहला नशा।
11: Tickets available now at Ticketmaster and AXS. Visit raga.events. Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
13: SonaTours.co.uk Japan Cherry Blossom Tour in March and April 2027. Book before the end of July and get up to 400 off. Call Sona Tours on 0208-951-0111.
14: Bhartiya Vidya Bhavan proudly presents the Summer Showcase 2026 at the iconic Harrow School on Saturday the 8th of August from 3pm. Experience an unforgettable celebration of Indian classical music, dance and culture. Seats are limited, so book now at ticketsource.com/Bhavan. For details, visit bhavan.net or call or WhatsApp 07421 497541. Radio partners, Leica Radio Network.
15: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208 507 7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
16: Honslow, अब इंडिया का फेवरेट स्वाद बिल्कुल आपके पास।
17: बीकानेर वाला परंपरा भी।
18: बीकानेर वाला में एंजॉय कीजिए फेमस छोले भटूरे, राज कचौरी, मिठाई और बहुत कुछ। आज ही आइए 101-105 हाई स्ट्रीट हॉन्स्लो, TW3 1QT। कॉल करें 07487-687-885।
19: Hello London, the wait is over. Kalyan Jewelers invites you to the grand opening of our spectacular new showroom. Join us on Green Street, Upton Park this July 31st. Kalyan Jewelers, also at Belgrave Road, Leicester.
3: Manoranjan with Ravi Sharma.

स्वागत है आपका मनोरंजन कार्यक्रम के दूसरे दौर में। माय नेम इज रवि शर्मा और इस वक्त मैं आपको चिंतन सुनाता हूं। मंडे टू फ्राइडे 11 बजे की खबरों के बाद लेकर आता हूं कोई एक विचार जो जुड़ा हो किसी प्रसंग से, किसी ऐतिहासिक घटना से, किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व से। ऐसा विचार जो हमारे लिए प्रेरक बने, प्रेरणा देने वाला, इंस्पायर करने वाला। आज के चिंतन में हम शामिल कर रहे हैं प्रयागराज भारत से श्री प्रहलाद नारायण व्यास जी का भेजा आलेख। याद दिला रहे हैं रवि जी, आज भारत के पूर्व राष्ट्रपति, भारत के महान वैज्ञानिक, दूरदर्शी विचारक और 11वें प्रेसिडेंट, जिन्हें भारत के लोग मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहते हैं, आज उनकी पुण्यतिथि है। हमारी ओर से श्रद्धांजलि दीजिएगा उनको। आपको बता दे भाई, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कौन थे? जनता के राष्ट्रपति ये भी कहा जाता है उन्हें। 25 जुलाई 2002 से 25 जुलाई 2007 तक 5 बरस के लिए वो भारत के राष्ट्रपति के रूप में सेवा करते रहे। जानते हैं उनका नाम? अबुल पकीर जैनुल अब्दीन अब्दुल कलाम, एपीजे अब्दुल कलाम। डॉक्टर कलाम की आज पुण्यतिथि है। 27 जुलाई 2015 को उनका निधन हुआ। और निधन हुई कैसे? आज पुण्यतिथि है उनकी, याद करते हैं उनको, उनकी कुछ एक बातों को। क्योंकि 27 जुलाई 2015 को भी IIM शिलोंग में स्टूडेंट्स को एड्रेस कर रहे थे। एक यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को वो जब एड्रेस कर रहे थे, वहीं कोलैप्स हो गए और निकल लिए। ऐसे व्यक्ति बड़ी, क्या कहते हैं भाई, शांतिपूर्ण मृत्यु को अपने आप के वर्णन करते हैं। इसरो में भारत के पहले स्वदेशी SLV-3 प्रक्षेपण यान के डेवलपमेंट में उनका बहुत बड़ा अहम रोल था। DRDO में इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम की उन्होंने रहनुमाई की, नेतृत्व किया। भारत के डिफेंस और स्पेस प्रोग्राम को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का बहुत बहुत योगदान था। 1981 में पद्म भूषण मिला, 1990 में पद्म विभूषण और 1997 में तो भारत ने उन्हें सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया, भारत रत्न, द हाईएस्ट अवार्ड। भारत का ये सबसे ऊंचा सम्मान है, सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, भारत रत्न। अब साहब, उनकी बहुत सारी खूबियां कई बार जिक्र कर चुके हैं हम। आज उनकी पुण्यतिथि पर प्रहलाद नारायण व्यास जी ने जो आलेख भेजा, उसमें याद दिलाया है उनकी जीवन की एक घटना को। ये तो आप जानते हैं कि वो कहते थे, सपने वो नहीं होते जो आप सोकर देखते हैं, सपने तो वो हैं जो आपको सोने नहीं देते हैं। किसी उद्देश्य को, मकसद को, मंजिल को पाने के लिए जब आप जी जान लगा देते हैं, वही हैं आपके सपने। खैर साहब, हम उनके जीवन की एक छोटी सी घटना आज प्रोग्राम में शामिल कर रहे हैं जो व्यास जी ने भेजी है। आप जानते हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का जन्म जो है वो हुआ था 15 अक्टूबर 1931 में। और कहां हुआ था? साउथ में, दूर रामेश्वरम में। अब रामेश्वरम वो जगह है भाई जहां से श्रीलंका बहुत नजदीक है, और वो रामेश्वरम का जो पुल सुना होगा आपने, जो नासा के वैज्ञानिकों ने दिखा भी दिया है, समंदर में दिखाई पड़ता है, श्री राम के समय का सांस्कृतिक नगरी है, वहां डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का जन्म हुआ। शिक्षा दीक्षा वहीं, बचपन में बड़ा संघर्ष करना पड़ा पढ़ाई जारी रखने के लिए। लेकिन उनके जीवन की एक घटना भाई, छोटी उम्र में ही काम तो करना पड़ा उन्हें, फिर
एक नौकरी की तलाश में उन्होंने संघर्ष किया। अब नौकरी निकली थी उत्तर भारत में, दक्षिण भारत से उत्तर भारत तक यात्रा करने के लिए पैसे नहीं थे, बड़ी मुश्किल से पैसे जुटाए और उसके बाद वे इंटरव्यू के लिए नॉर्थ में आए। गंगा किनारे बसे एक शहर में उनका इंटरव्यू हुआ और उन्हें बता दिया गया कि वो फेल हो गए हैं। एपीजे अब्दुल कलाम बहुत निराश हुए, डिसअपॉइंटेड। हर किसी की जिंदगी में ऐसे कुछ क्षण आते हैं। उन्होंने सोचा मेरे पास तो वापस जाने के लिए किराया भी नहीं है, मैं तो सोच गया था कि ये जॉब मिल जाएगी, लेकिन इंटरव्यू में फेल हो जाने के बाद बहुत मायूस, बहुत निराश, बहुत टूटे हुए इस नौजवान ने, उम्र छोटी थी पर जॉब करने योग्य थी, इन्होंने फैसला किया कि ये गंगा में डूबकर मर जाएंगे, वापस नहीं जाएंगे। जाएंगे भी कैसे, ना किराया है ना मंजिल पाने की जो धुन सवार थी वो भी नहीं मिली, तो वापस जाके क्या मुंह दिखाएंगे। अब इतनी निराशा में वो प्लानिंग कर ही रहे थे, पुल पर पहुंच गए कि यहां से छलांग लगा दूंगा गंगा में। तभी एक महात्मा आ गए, उन्होंने एपीजे अब्दुल कलाम का चेहरा पढ़ा और बोले, क्यों नौजवान बहुत निराश लगते हो? जनाब अब्दुल कलाम जी ने बता दिया कि मैं जीना नहीं चाहता, आया था, विश्वास था कि नौकरी मिलेगी, बहुत तैयारी की थी, पर इंटरव्यू में फेल हो गया, अब मैं जीना नहीं चाहता। महात्मा ने कहा, अरे भाई समझे नहीं, आपको जानबूझकर उस परमपिता परमात्मा ने फेल करवाया है। अब भाई वो तीर्थ स्थान था गंगा का किनारे, और वहां पर एक महात्मा का मिलना एपीजे अब्दुल कलाम की उत्सुकता बढ़ी, भगवान मुझे क्यों फेल कराएंगे, मैंने कोई पाप कर्म नहीं किया, मैंने किसी का दिल नहीं दुखाया। अरे तुम्हें फेल भगवान ने इसलिए करवाया है कि तुम्हारे लिए कोई बहुत बड़ा काम उन्होंने सोच के रखा है, इस छोटी सी नौकरी में तुम अपनी जिंदगी खपा दोगे, उन सपनों का क्या होगा, उन योजनाओं का क्या होगा जो तुम्हारे मन में टाइम टू टाइम हिलोरे मारती हैं, जो तुम्हें रात भर जगाती हैं, सपने दिखाती हैं, वो प्लानिंग्स, वो योजनाएं। अब्दुल कलाम का इंटरेस्ट बना और कहा, तो महात्मा जी आप ही बताइए क्या करूं, मैं क्या करूं, क्या मुंह दिखाऊंगा वापस जाके। महात्मा ने कहा, तुम्हें जाने के लिए किराया मैं दूंगा, किराया नहीं है ना तुम्हारे पास, पर वापस जाओ और उसी शक्ति से, उसी उत्साह से पढ़ाई में मन लगाओ, देखना ईश्वर ने तुम्हारे लिए कुछ सोच के रखा है। आज इस इंटरव्यू में, इस परीक्षा में तुम फेल हुए हो क्योंकि भगवान ने इससे बड़ा काम, इससे बड़ा दायित्व तुम्हारे लिए प्लान करके रखा है। और बहनों भाइयों, महात्मा जी ने समझाया कि तुमने अपना कर्म किया, फल नहीं मिला क्योंकि फल तुम्हारे हाथ में नहीं है, फल देना उसका काम है, बस अपना कर्तव्य निभाते रहो, फल की चिंता मत करना, फल वो देगा ऊपर वाला। भाई गीता की इन बातों का डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम पर ऐसा असर पड़ा कि जिंदगी भर उन्होंने गीता अपने साथ रखी। वो वेजिटेरियन थे, सात्विक जीवन, सादा जीवन, वापस लौटे और विज्ञान की दुनिया में तहलका मचाने वाले, एक बहुत बड़ा काम करके मिसाइल मैन कहलाने वाले डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भारत के 11वें राष्ट्रपति बने। जुलाई 2002 में उन्हें प्रेसिडेंशियल पैलेस यानी राष्ट्रपति भवन में एंट्री मिली, वहां भी वो बड़ी सादगी से रहे, लेकिन कुछ बड़े बड़े काम ऊपर वाले ने हमारे लिए सोच के रखे होते हैं, कहीं एक असफलता मिलने पर, कहीं एक बार कहीं फेल हो जाने पर आप ये मत समझिए कि आप उसके काबिल नहीं है, हो सकता है आप उसे किसी बड़े काम के लिए तैयार हैं, ईश्वर ने तुम्हें
कोई बहुत बड़ी जिम्मेदारी देने के लिए तुम्हें यहाँ फेल करवाया है। उसकी इच्छा के बिना तो कुछ होता नहीं। वो चाहता था कि आप भारत के राष्ट्रपति बने, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रेसिडेंट। उसके बाद बहनों भाइयों, डॉक्टर अब्दुल कलाम ने इस घटना का जिक्र किया, बहुत सारे लोगों के लिए प्रेरणा बन गई। जिंदगी में जब कभी असफलता यानी नाकामी मिले, सोच लेना इससे बड़ी कोई जिम्मेदारी आपका इंतजार कर रही है।

आज का चिंतन, आज का विचार। छोटी छोटी असफलताएं आपको विचलित ना करें, बस ये विश्वास करके चलना कि ऊपर वाले ने कोई बहुत बड़ा पद, कोई बहुत बड़ी प्रतिष्ठा, कोई बहुत बड़ा काम आपके लिए सोच के रखा है, मिलेगा, जिससे तुम्हारा नाम भी होगा, काम भी होगा और बहुत ऊंचा मुकाम भी होगा। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, आज उनकी पुण्यतिथि पर उनके जीवन की एक घटना हम सबके लिए प्रेरणा बने, संदेश बने। डोंट गेट डिसअपॉइंटेड व्हेन यू फेल एट वन स्टेज, बिकॉज ए वेरी बिग सक्सेस इज वेटिंग फॉर यू।

ख्वाब न तुम दिखलाओ। सपने वो नहीं जो आप सोते समय देखते हैं, सपने तो वो हैं जो आपको सोने नहीं देते हैं। स्ट्रगल करने के लिए, मेहनत करने के लिए आपको मजबूर करते हैं, वो है सपने।

0: आज का चिंतन, आज का विचार। जब कभी जिंदगी में पूरी मेहनत करने के बावजूद सफलता ना मिले तो सोच लेना, उससे बड़ी कोई जिम्मेदारी आपका इंतजार कर रही है, उससे बड़ा कोई पद प्रतिष्ठा या कोई पोस्ट इज वेटिंग फॉर यू। भारत के पूर्व राष्ट्रपति, बहुत सारे अवार्ड से सम्मानित, बहुत रिस्पेक्टेड और भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी की आज पुण्यतिथि है। 27 जुलाई 2015 में शिलोंग में एक स्टूडेंट्स कार्यक्रम में लेक्चर करते हुए उनका निधन हुआ था। वो नौजवानों को बहुत प्रेरित करते थे, समय समय पर उनके लेक्चर यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में ऑर्गेनाइज किए जाते थे। और देखिए, अपनी जिंदगी का आखिरी दिन भी उन्होंने काम करते हुए, स्टूडेंट्स को एड्रेस करते हुए अपने व्याख्यान के साथ ही उनका जीवन समाप्त हुआ। और एक और हैरानी की बात बताएं, भारत के राष्ट्रपति रहने के बावजूद उनकी, आप जानते हैं उन्होंने शादी तो की नहीं थी, परिवार नहीं था उनका, लेकिन उनके सामान में, उनकी प्रॉपर्टीज में क्या कुछ मिला? दो जोड़ी कपड़े और कुछ किताबें। कैसे कैसे व्यक्तित्व, कैसे कैसे महापुरुष पैदा किए हैं उस धरती ने। आज उनकी पुण्यतिथि पर डॉक्टर प्रहलाद नारायण व्यास जी प्रयागराज से, भारत में प्रयागराज बता दें भाई, पुराना इलाहाबाद, अब उसका वो सबसे पुराना नाम टाइटल खोज के अब उस शहर को प्रयागराज कहा जाता है, वहां से प्रहलाद नारायण व्यास जी ने ये चिंतन आज का भेजा। बहुत बहुत धन्यवाद उनको। जो गीत हमने आपको सुनवाया, दैट वॉज टेकन फ्रॉम द फिल्म जीना नहीं बिन तेरे, मनहर उदास और साधना सरगम की आवाजें थी। लीजिए अब चिंतन को समेटते हैं, आज का चिंतन, आज का विचार अब समाप्त होता है।
1: चिंतन चिंतन
2: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कम्पेटिटिव रेट्स में बता दूं, एक पाउंड के बदले टुडे दे आर गिविंग 127.45 रुपीज, 127 रुपए 45 पैसे का रेट चल रहा है। यू कैन ट्रांसफर वाया ब्रांच, ऑनलाइन और बाय यूजिंग द योनो SBI UK मोबाइल ऐप। Terms and conditions apply.
2: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
3: Ye hai like a goal.

बैक टू बैक संगीत में पहला गीत शोभा गोटू और सखियों की आवाजों में जा रहा है भारत। यस, भारत में भाई इंतजार कर रहे हैं, वहाँ ऋषि और रूपाली की शादी हुई है और कहते हैं आपके रेडियो से सुनना चाहते हैं शादी का गीत। तो भाई ये दामिनी जी की फरमाइश पर ये गीत हम शामिल कर रहे हैं। इट्स गोइंग टू ऋषि एंड रूपाली। विशेज फॉर द हैप्पी मैरिड लाइफ फॉर बोथ ऑफ यू।

0: और जो है वो शादी के बंधन में बंधे हैं, तो आप उन्हें बधाई दे करके शादी का गीत लगा दीजिए। भाई हमने लगा दिया, थैंक यू वेरी मच, और बहुत बहुत बधाई वंस अगेन टू ऋषि एंड रूपाली, एंड एन्जॉय योर भाई वेडिंग, और वैवाहिक जोड़ी जो है ये सुखी रहे, खुश रहे, ये दुआएं हमारी ओर से। लीजिए साहब, 11:41 हो गए हैं, याद दिला दूं कि हमारी आपकी मुलाकात दोपहर बाद 1 बजे तक जारी रहेगी। आपके घर परिवार में अगर किसी का जन्मदिन है या शादी की सालगिरह या कोई और उत्सव, तो हमारी ओर से बहुत बहुत बधाई। वैसे आज जन्मदिन मनाने वालों में कुछ फिल्मी हस्तियां शामिल हैं, जैसे कि कीर्ति सेनन, भाई नई अभिनेत्री है, मतलब उतनी नई भी नहीं लेकिन इतनी पुरानी भी नहीं है कि उसके गीत हम अपने कार्यक्रम में शामिल कर सकें। 27 जुलाई को 1990 में नई दिल्ली में पैदा हुई थी कीर्ति। ओ लंबी और भाई ऐसी व्यक्तित्व की स्वामिनी है। आज ही के दिन उद्धव ठाकरे का भी जन्म हुआ था मुंबई में। भाई ये उद्धव ठाकरे पॉलिटिशियन हैं और बाल ठाकरे के सुपुत्र, तो आज अपना जन्मदिन मना रहे हैं। मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स। राहुल बोस ये भी एक अभिनेता थे भाई, कुछ एक फिल्मों में दिखाई दिए हीरो, अच्छी फिल्में थी लेकिन आजकल बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं है। 1967 में कोलकाता में इनका जन्म हुआ था। और कोई है भाई आज अपना जन्मदिन मनाने वाले? हैं तो बहुत सारे लोग, लेकिन जिनके नाम हमारे पास पहुंचे हैं भाई उन्हें हम हैप्पी बर्थडे कहते हैं। मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। एक और नाम है कलाकारों में, विश्वमोहन भट्ट। ये भाई नाम आपने नहीं सुना होगा लेकिन जो भी कला से जुड़े हैं भारत में वो इस नाम से परिचित हैं। जयपुर में जन्मे थे 1950 में विश्वमोहन भट्ट। इसके अलावा भाई जन्मदिन मनाने वालों में भारती मुखर्जी हैं, वो भी कोलकाता में जन्मी थी 1940 में। और साहब बल मेरा जन्मदिन नहीं हुआ था इस दिन, जुलाई में पैदा हुआ था लेकिन ये दिन नहीं था। थैंक यू, मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स भाई जो लोग आज अपना जन्मदिन मना रहे हैं।
1: दिस इज लाइक अ गोल्ड, अ पार्ट ऑफ द नंबर 1 एशियन कमर्शियल रेडियो नेटवर्क इन ग्रेटर लंदन, द लाइका ग्रुप।
0: और एक और सूचना हमारे सामने उभर कर आई है, स्क्रीन पर छाई है। क्या है सूचना, देखता हूँ भाई अगर मिल जाएगी तो। दिवाली, अरे यस, कैसे भूल सकता हूँ मैं भाई। कल हमने इस दिवाली के त्योहार को जीवंत देखा। यहाँ यूके में दिवाली स्टोरी नाम से एक बहुत बड़ा कार्यक्रम जो है तैयार हो रहा है, कल उसकी कुछ अंश हमने देखे। स्वामी नारायण मंदिर, BAPS स्वामी नारायण मंदिर नीजडन से एक बड़ी कोच, वो पूरी की पूरी भाई रामलीला उस पर पेंट हुई थी, राम जी सीता जी और लक्ष्मण जी हनुमान जी सबका दर्शन करवाते हुए गाते बजाते हुए लंदन में इस कोच ने भाई प्रचार प्रसार किया उस इवेंट का जो होने जा रहा है 27 सितंबर को, आई बिलीव ऑन संडे। मेरे पास इसकी इन्फॉर्मेशन पूरी खुल नहीं रही है, आई डोंट नो व्हाई, लेकिन आपको बता दूं कि ये बहुत बड़ा इवेंट है जिसकी कल प्रमोशन तो हुई लंदन आई पर, भाई आर्टिस्टों ने अपने कॉस्ट्यूम में वहाँ नृत्य किया और राम जी और सीता जी दोनों कोच में खुली बस में हमारे साथ यात्रा कर रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे कि भाई हम भगवान राम के साथ साथ जो है उस यात्रा में सरयू नदी पार करके और वनवास की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगा माहौल और लोग देख रहे थे, गाने बजाने की हमारी वो भजन कीर्तन वाली आवाज़ भी दूर दूर तक पहुंच रही थी स्पीकर के माध्यम से, और वो कोच गुजरी लंदन की सड़कों से पहुंची लंदन आई पर। नितिन जी बहुत बहुत बधाई आपको इस शानदार आयोजन के लिए, जिसकी अभी भूमिका ही देखी हमने लेकिन पूरा देखेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा।
1: This is like a gold. Feel good track. Brought to you by Dairy Valley.
2: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.
0: ये अंदाज तो भाई ओपी नैयर का है। कुछ हटके कुछ डटके ओपी नैयर भाई वो उनके साज अपने होते थे कुछ इस तरह के साज गीत में शामिल करवाते थे कि वो

फोक भी होता था, पॉप भी होता था, और छाया जाता था भाई वो संगीत दिलों पर। आशा भोसले और शमशाद बेगम की आवाजें, पहचान लिया होगा आपने गीत कौन सा है।

0: the track. Brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: Manoranjan with Ravi Sharma.
3: Leica Gold.
0: Leica Extra Podcast Update.
4: याद दिला दूं आपको भाई, लाइका एक्स्ट्रा पर हमारा नया एपिसोड नंबर 26 आ चुका है, 26, और जिसका टाइटल है री इन्वेंशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो साहब ये उपलब्ध है और दीप राजा इज स्पीकिंग टू मीनल एंड समीरा, ये ग्लोबल फाइनेंस लिमिटेड के, उनसे बात करेंगे और बहुत सारी जानकारी आपके लिए उपलब्ध रहेगी। लाइका एक्स्ट्रा पॉडकास्ट अवेलेबल ऑन स्पॉटिफाई, यूट्यूब, Amazon, Apple and other major streaming platforms. जरूर देखिएगा।
0: Leica Extra is here. Get all the latest travel updates for London at breakfast and drive.
5: ये है
6: Leica Gold.
4: travelhubworld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं by opening their third branch on 2 Ealing Road, Wembley. Find the best price on any hotel anywhere in the world on travelhubworld.com. Flights and holidays हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता। Call Travel Hub 24/7 on 0208-782-8833 or visit travelhubworld.com.
7: Travel Hub, best service with unbeatable price.
4: At all protected.
7: विजिट travelhubworld.com।
8: आपके घर में किसी प्रियजन की मृत्यु हुई है, इस दुख की घड़ी में आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर अंतिम संस्कार की सभी रस्में ओम फ्यूनरल केयर करके देंगे। कैंटन रोड वेस्ट लंदन और इल्फर्ड ईस्ट लंदन में ओम फ्यूनरल केयर्स वेल वर्स्ड प्रीस्ट्स कैरी आउट ऑल द राइट्स एंड रिचुअल्स इन इंग्लिश, हिंदी, गुजराती, मराठी, तमिल एंड अदर लैंग्वेजेस। कॉन्टेक्ट कीजिए कल्पेश पटेल ऑन 0208-922-3344 line 0730099-8823. नोट किया? किटी पार्टी, बिजनेस मीटिंग, कॉर्पोरेट इवेंट, फैमिली ओकेजन, बस व्हाट्सएप करें गॉडफादर एंड को बार एंड किचन को। सर्विस एक्सेलेंट, फूड अमेजिंग और एक्सपीरियंस ऐसा कि आप खुद भी आएंगे और दूसरों को भी रेकमेंड करेंगे। विवेक हाउस वॉटफर्ड, बुक ऑन व्हाट्सएप 0730099-8823.
9: Okay, bags are here. Where's the taxi? I can't load the map.
10: Relax, I've booked the Uber already.
9: How? My roaming isn't even working yet.
10: I switched to Simzy before we left London.
9: Simzy? Since when are you the tech expert?
10: Since I decided I want a stress-free holiday.
11: Don't let roaming ruin your holiday spirit. Get the Simzy eSIM for affordable data in India and across the globe. Simzy, holiday travel simplified.
12: T's and C's apply.
13: Location, location, location.
14: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
13: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
14: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
13: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
14: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
13: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
14: To book, call our London office on 0203963-5757. Greens by Danube. Prime location.
13: High appreciation.
14: In Dubai.
1: No need to fly back home this summer holiday. Come to Ambala and try out our Khoya Barfi, made from pure buffalo milk. Yes, it's the same barfi you get back home. Now made in England with milk from Ambala's own herd of buffalo. Only from Ambala. Don't take our word for it. Come and taste it for free this month. Now also doing the best kara chai, masala chai and elaichi chai. Just like back at home. Ambala. Heritage you can taste. Visit ambala.co.uk. Okay.

0: Mamster Golgappe at Golgappian da Pani.
1: All Mamster products are nut free and made in Canada. Now available at your nearest Asian grocery store.
2: The voice that defined a complete era. The songs that touched millions. She's coming to London. Soon.
3: Leica Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan.
4: Leica Gold. London का नंबर वन एशियन रेट्रो म्यूजिक स्टेशन अब अवेलेबल है ग्रेटर लंदन में 10:35 AM पर DAB डिजिटल रेडियो पर एलेक्सा पे बोलो प्ले लाइका गोल्ड और ऑनलाइन सुनो लाइका गोल्ड.com पे

0: पल दो पल का साथ हमारा, मोहम्मद रफी, आशा भोसले और साथियों की आवाजों में आप सुन रहे थे ये कव्वाली। That was taken from the film The Burning Train। भाई ऐसी ऐसी फिल्में भी बनी हैं जिनमें आप एडवेंचर्स देख सकते हैं। बर्निंग ट्रेन में यात्रा कर रहे कुछ मुसाफिरों का वो व्यवहार ही फिल्म की कहानी बनाता है। पल दो पल के लिए हम सब मुसाफिर हैं और पल दो पल के लिए मिले हैं सफर में, और सफर का जो क्या कहें आनंद है वो ले रहे हैं।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: State Bank of India UK reminding that if you want to send money to India, this is the time. There is a good rate. Why at the moment for £1 they are giving 127.45 rupees. You can transfer via branch, online or by using the योनो SBI मोबाइल ऐप जो है आप भेज सकते हैं पैसे। टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई।
1: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया UK ऑफर्स सेविंग्स प्रोडक्ट्स, बिजनेस बैंकिंग, बाय टू लेट मॉर्गेजेस एंड सेफ डिपॉजिट लॉकर्स। विजिट sbiuk.statebank टू लोकेट योर नियरेस्ट ब्रांच। टीज़ एंड सीज़ अप्लाई।
2: ये है लाइका गोल्ड 10:35 AM।

0: கட்டாசேரி ஜோசப் யசுதாஸ் கேஜே யசுதாஸ். देखिए साहब, सुरीली आवाज, और अब तो 86 साल की उम्र हो गई है उनकी, और भाई संगीत के विषय में बहुत गहन अध्ययन है इनका, तपस्या है इनकी। इनका एक कोई वो इंस्टीट्यूट भी चला रहे हैं म्यूजिक का, आगे नई पीढ़ी को पास ऑन करने के लिए। पर यशुदास इस सप्ताह के कलाकार होंगे, और इनकी आवाज में बहुत सारे गीत आप सुन पाएंगे। कई भाषाओं में इन्होंने गाए हैं, हम तो हिंदी फिल्मों के ही सुनवा रहे हैं आपको, लेकिन इन्होंने जो गीत गाए हैं वो मलयालम, कन्नड़, उड़िया, उड़ीसा की जो भाषा है, बंगाली, मराठी, अरबिक, तेलुगु, लैटिन, भाई इतनी भाषाओं में इन्होंने गाए हैं गीत, और गीतों की संख्या बल 50,000 से भी ज़्यादा गीत गा चुके हैं यशुदास। तो आर्टिस्ट ऑफ द वीक यशुदास की आवाज सुनिए, एंजॉय कीजिएगा, इस पूरे सप्ताह गूंजेगी उनकी आवाज लाइक अ गोल्ड रेडियो पर।
1: फील गुड ट्रैक ब्रॉट टू यू बाय डेरी वैली,
2: सॉफ्ट एंड टेंडर लाइक ग्रैंडमास वार्म हग। डेरी वैली पनीर इज मेड विद नेचुरल इंग्रेडिएंट्स एंड जीरो प्रिजर्वेटिव्स। विजिट derivalley.net।
3: One, Ravi Sharma on your number one radio.

महेंद्र बजारिया साहब कहती हैं कि खुश कर दिया रवि जी, ये गीत आपकी पसंद का इसलिए आपके नाम किया जी। वैसे बहुत लोगों को पसंद है, बांट लो आपस में। देखो झगड़ा मत करना भाई, जिसको जो अच्छा लगे ले लिया करो, हम तो लुटा रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। नाउ देयर आर अदर मैसेजेस, स्क्रीन पर बहुत सारे मैसेजेस हैं जिनमें लिखा है थैंक यू वेरी मच, आपने हमारा दिन बना दिया ये गीत सुनवाकर। अब वो कौन सा गीत था जो आपका दिन बना गया वो नहीं पता चलता, क्योंकि आपने मैसेज भेजा था करीब आधा घंटा पहले कौन सा गीत बजाया था मैंने, मैं ढूंढता रहूँगा कहीं ऐसा ना हो वो गीत किसी और ने पसंद कर लिया हो।

0: मुकेश लता मंगेशकर
1: Brought to you by Dairy Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
0: थैंक यू वेरी मच मानसी रंजन वत्सला जी विजय मॉरिशस वाले हंसा भूरा शोभना राय भाई आप सब ने जो गीत पसंद किए वो आप ही के लिए थे हाँ दिल की आवाज़ सुन करके और भाई आपके संदेश को सिरोधार्य करके दिल में उतार करके ये गीत सुनवाए गए हैं इन्हें अपने नाम कर लीजिएगा और आप कौन है जी आपने नाम नहीं लिखा लेकिन ढूंढ देंगे हम हाँ वजाहत हाशमी साहब आपकी पसंद का गीत आपके नाम रानी स्लो वाली और आपने भी अपना नाम नहीं लिखा है लेकिन हम ढूंढ लेते हैं भाई सूंघ लेते हैं पता लग जाता है कौन है ये इस तरह का मैसेज देने वाले थैंक यू वेरी मच भरत गंगाराम जी अमिता जी सो नाइस ऑफ यू और आप हैं कौन है आप अंजलि अंजलि हर मैसेज के नीचे अपना नाम जरूर लिखा करें प्लीज आप बच्चे को तंग करते हैं आप जो इस तरह से तो बच्चा परेशान हो जाएगा वो ढूंढता रहता है नाम कहाँ ओके थैंक यू वेरी मच और अर्जन जी सहर जी हिना पम्मी स्लो वाले महेंद्र पटेल क्रोडन वाले नीला चौधरी जगदीश जी बुशी में हरविंदर जी और भाई फारूख मोहम्मद जी ईस्ट लंदन वाले आप सब चिंतन के प्रेमी हैं जैस्मीन भी और सत्यनारायण सैनी सुनते हैं हमें इंडिया में थैंक यू वेरी वेरी मच एक संदेश और भी है आपके लिए और वो ये है कि भाई याद दिला दूं आपको लाइका रेडियो नेटवर्क इज द एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर ऑफ द स्टेज म्यूजिकल दिवाली स्टोरी टेकिंग प्लेस एट द ओवर अरीना वेम्बली ऑन संडे द 27th September विजिट AXS और वेम्बली फॉर द टिकेट्स
3: लाइका गोल्ड
4: This super hit song is proudly sponsored by Tilda Basmati Rice. Discover the serious delicious possibilities with Tilda.

0: आवाज की दुनिया के दोस्तों, आप सुन रहे हैं मनोरंजन प्रोग्राम आपके अपने प्रेजेंटर रवि शर्मा के साथ
1: चढ़ते

0: holiday breaks are brought to you by Southall Travel.
1: Southall Travel का संदेश आपके नाम भाई. They say that the FCDO has lifted its advice against all but essential travel to Dubai. So call Southall Travel for their most competitive Dubai deals. Their phone number is 0208-574-8410. At all protected.
0: Holiday breaks were brought to you by Southall Travel. Low prices for flights, hotels or holiday packages. Visit southalltravel.co.uk. Get all the latest travel updates for London at breakfast and drive.
2: ये है
3: Like a Gold.
1: travelhubworld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली. फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन travelhubworld.com. फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता. कॉल ट्रेवल हब 24/7 और 0208-782-8833 और विजिट travelhubworld.com.
4: ट्रेवल हब बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
1: एट ऑल प्रोटेक्टेड.
4: विजिट travelhubworld.com.
5: Start.

0: जहाँ तुम ले चलो, ये सब कहने की बातें होती हैं। कहाँ जा रहा है, जहाँ तुम ले चलो, और बीच रास्ते में ही फिर आप गाइडेंस देने लगते हैं, फिर वो क्या कहते हैं, नेविगेशन बन जाते हैं। इधर से कौन जाता है, इधर से गाड़ी फंस जाएगी, उधर चलो ना, आज वहाँ क्या करने जाना है भाई। मतलब अगर आपने ही चलाना है तो फिर गाड़ी आप ही ड्राइव कर लो। ओहो उधर कहाँ जा रहे हो, समझते नहीं हो आप इधर से लो गाड़ी, इधर से लो, मैं बता रही हूँ आगे बंद है रास्ता। ओहो बाद में कर दिया होगा, पहले तो खोला था ये रास्ता, ये रास्ते बंद कर देते। कहीं पर काम चल रहा है, कहीं पर भाई कुछ कुछ करके ना सफर लंबा हो जाता है और हम सफर उसे और भी लंबा बना देते हैं।
1: Our sponsor by Coca Noodles. More flavors, more convenience, more yum. Grab your Coca Bowl today.
2: Manoranjan with Ravi Sharma.
3: Like a gold.
1: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: LemFi ke rates note kar lijiye bhai, 1 pound ke badle they are giving in Indian currency 127.73 rupees, Pakistani 370.05, Sri Lankan rupee 447.75, Bangladeshi take 164.44 aur Afghani 88.36.
3: Leica Radio.
1: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code Leica. Download LemFi now. T's and C's apply. Gold Rate, brought to you by Pooja Sweets and Savories, PoojaSweets.com, or visitors in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
0: Well, Sona bhai phir upar ki taraf ja raha hai. At this time, the gold is sold at the rate of 98.99 pounds per gram.
1: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers, PoojaSweets.com, or visitors at Eastham, Hounslow or Crowley.
0: किसी बहुत खूबसूरत चीज़ को देखकर आप देखते रह जाते हैं और फिर आंखें मूंद लेते हैं, ये आंखें अपने आप बंद हो जाती हैं। मैंने तो लोगों को देखा, भगवान के सामने भी जाएंगे दर्शन करने, लेकिन हाथ जोड़ के आंखें बंद करके कहीं खो जाएंगे। जानते हैं क्यों? शायद इसलिए कि भगवान की उस छवि को वो अपनी आंखों में उतार करके फिर निकलने नहीं देना चाहते। बंद कर लेते हैं खिड़की को, दरवाजे को, प्रभु दिल में रहें।

0: और पूजा करूंगी तेरी। फकीरा फिल्म का गीत था लता जी की आवाज में। भाई ये गीत हमारे बहुत हॉट हैं मगर स्टूडियो बहुत ठंडा है। यकीन मानिए इंडिया में तो बहुत अच्छा लगता था जब वहाँ आकाशवाणी के स्टूडियोज़ में हम प्रोग्राम करने जाते थे, बहुत देर तक रुकते थे और भाई एयर कंडीशन स्टूडियोज़ होते ही आप जानते हैं मशीनों के कारण। लेकिन साहब यहाँ तो इतना ज़्यादा ठंडा है कि घर से रजाई लेकर आने को दिल करता है, या तो रजाई लाएँ या हीटर लाएँ।
1: ये है Leica Gold.
2: Most mortgage brokers charge you a fee, but we don't charge you a penny, and we still put cash back in your pocket.
3: Here's how it works. When you remortgage through Cashback Remortgages, the bank pays us a commission. We take our share, and we give the rest back to you as cashback.
2: No fee, no gimmicks, real money back. A better rate and cashback from a broker that costs you nothing.
3: Call 0208 706 0915 for a free, no obligation chat. That number once again, 0208 706 0915, or visit cashbackremortgages.co.uk.
2: Cashback Remortgages. Mortgages, the broker that gives you back.

0: Disha Supreme Extra Long Grain Basmati Rice. Indulge with Disha. Available at all independent stores nationwide.
1: श्रावण के पवित्र महीने में करें भगवान शिव की आराधना। परम पूज्य संत श्री चिन्मयानंद बापू जी के श्रीमुख से सुनिए श्री शिव महापुराण कथा। 13 अगस्त से 19 अगस्त तक हिंदू सनातन मंदिर ईलिंग रोड वैमली में। समय दोपहर बाद 3 बजे से शाम 7 बजे तक। नित्य कथा और महाप्रसाद की पावन व्यवस्था का आनंद लें। शिव महापुराण का अपने पूर्वज माता पिता के नाम से मूल पाठ डेली यजमान और सेवा के लिए संपर्क करें 07930271।
2: Are you ready? Raghavend presents to you for the first time legend Udit Narayan and son Aditya Narayan performing live with Bade Mia Chote Mia this December.
3: Dil ne ye kaha hai dil se bole chudiya.
2: One date, one show, Sunday the 20th of December at the Ovo Arena, Wembley, London. Tickets available now at Ticketmaster and AXS. Visit raga.events. Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
4: Mum, I'm outside. Yes, literally just landed.
5: Wait. How are you calling already? I'm still searching for Wi-Fi.
4: Oh, I'm on Simzy. Downloaded the eSIM back at Heathrow.
5: And you didn't pay those massive roaming charges?
4: Not a penny extra. Just a cheap local data plan. I even kept my UK number for bank alerts.
6: Heading home for the holidays? Skip the roaming drama. Get instant 5G data in India and 100 plus countries. Download the Simzy app today. Simzy, your global flow. T's and C's apply.
7: किटी पार्टी हो या फैमिली का कोई भी ओकेजन हो या फिर बिजनेस रिलेटेड कोई भी गेट टुगेदर,
8: अब हर इवेंट बनेगा स्टाइलिश एट विवेक हाउस गॉडफादर एंड को। स्वादिष्ट साउथ एशियन खाना, 5-course lunch सिर्फ £35, जबरदस्त एम्बियंस और कन्वीनियंट कार पार्किंग अवेलेबल एट हॉलिडे इन वॉटफोर्ड। तो देर किस बात की, बुकिंग के लिए व्हाट्सएप करें 07300998823।
9: Discover unique Grand Prix holidays with flights, race tickets and hand-picked stays. Combine iconic motorsport weekends with city breaks, beach escapes or even cruise experiences for the ultimate getaway. Prices start from just £799 per person. Visit skylordcruiseandholidays.com or call 0192 388 3100. Atoll protected.
10: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड। और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 02081502025 और विजिट meraboiler.com। T's and C's apply।

0: Mamster નું પાણીપુરી અને પાણીપુરી નો પાણી.
1: All Mamster products are nut free and made in Canada. Now available at your nearest Asian grocery store.
2: मनोरंजन विद रवि शर्मा.
3: और अब मनोरंजन को समेटने का समय हो गया है ना भाइयों. कुछ संदेश आए भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका. सत्य रंजन दास भारत से आपने मैसेज भेजा है और जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. अनीता जी आपका संदेश सर आंखों पर. हेतल सोलंकी जी, सो नाइस ऑफ यू. और बहन भाइयों आप सभी का जो खामोशी से सुनते हैं, कभी मैसेज नहीं भेजते, लेकिन सर आंखों पर आपका प्यार और सत्कार. लीजिए अब अगली मुलाकात तक के लिए आपसे इजाज़त चाहते हैं, क्योंकि बाली ब्रह्म भट्ट तैयार हैं महफिल सजाने के लिए और आपका दिल बहलाने के लिए. दिल की बात करें तो साहब चुपचाप अपना दिल निकाल के मेरे हवाले कर दो. अरे संभाल के रखूंगा, पाल के रखूंगा, हेल्दी रहेगा. बाय बाय.

0: मैमस्टर पानी पूरी और पानी पूरी का पानी.
1: All Mamster products are nut free and made in Canada. Now available at your nearest Asian grocery store.
2: चाय ब्रेक हो या बिजी वर्क डे, सबको चाहिए एक परफेक्ट कप ऑफ चाय.
3: और अब रॉयल चाय लाए हैं स्मार्ट सॉल्यूशन फॉर योर बिजनेस.
2: गेट अ रॉयल चाय वेंडिंग मशीन फ्री, परफेक्ट फॉर कैफेज, रेस्टोरेंट्स, ऑफिसेज, शॉप्स, पेट्रोल स्टेशंस और कम्युनिटी स्पेसेस.
3: रिच ऑथेंटिक टेस्ट एवरी सिंगल टाइम.
2: रॉयल चाय, ब्रूड फॉर बिजनेस.
3: ईमेल नाउ info@royalchaivending.com. लिमिटेड ऑफर, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई.
4: From breathtaking wedding jewelry to the finest diamond rings, do come in and see us at Minar Jewelers to create the perfect symbol of your love story. Minar Jewelers, the diamond specialists. Call 020-8767-2142.
5: Okay, Laura,
6: from the top.
7: When your 9-year-old is an unexpected tuba prodigy, and now you want to support her cheek-puffing talent, be a step ahead. With Barclays Premier, with personalized financial planning and a dedicated advisor. Barclays, backing your future. Eligibility criteria apply. Investment products and services are provided by Barclays Bank PLC and its subsidiaries. Capital at risk.
8: Like a Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan. Sounding better than ever in the sunshine. This is Like a Gold.

0: Witness this spectacular live musical on Sunday the 27th of September. A powerful stage retelling of the Ramayana. Original music, breathtaking dance, grand visuals and storytelling for every generation. Book now on DiwaliStory.com.
1: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड। और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 0208150 2025 और विजिट meraboiler.com। टीज एंड सीज अप्लाई।
2: लंदन, आर यू रेडी? राघव एंड्स प्रेजेंट्स टू यू फॉर द फर्स्ट टाइम लेजेंड Udit Narayan and son Aditya Narayan performing live with Bade Mia Chote Mia this December. One date, one show, Sunday the 20th of December at the Ovo Arena, Wembley, London. Tickets available now at Ticketmaster and AXS. Visit raga.events. Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
3: Have you had a bereavement in the family? In times of sadness and grief, Om Funeral Care is there to help and support with all customs and rituals. At Canton Road in West London and Ilford in East London, Om Funeral Care's well-versed priests carry out all the rites and rituals in English, Hindi, Gujarati, Marathi, Tamil and other languages. Contact Kalpesh Patel on 0208-922-3344 at 24. 4-hour line
4: across London. This is Bally Brambat on Leica Gold.

0: ये ढोलक को बोलते हैं दत्ताराम ठेका। दत्ताराम का संगीत और प्रदीप, कवि प्रदीप ने लिखा गाना। अब मैं बात कर रहा था रंजीत रजवाड़ा जी से एंड प्रैक्टिस कर रहे थे, पता कौन सा गाना, चांदी जैसा रंग है तेरा, मेरा फेवरेट गीत। एंड ही इज प्रैक्टिसिंग दैट सॉन्ग फॉर एंड ही इज गोना प्रेजेंट इट एट हैरो आर्ट सेंटर। यस, मैं जा रहा हूँ 30 तारीख को एंड टिकट्स आर गोइंग सो फास्ट। कम वन कम ऑल, चांदी जैसा रंग है तेरा।
1: Forgotten memories refreshed like a gold.
0: Yes, come one, come all. Join me at Harrow Arts Center to listen to none other than Ranjit Rajwada entertaining us to the fullest.

0: ऑफ कोर्स यू गोना बी वंडरिंग ये सेकंड सॉन्ग कहाँ से आ गया, कैसे आ गया। तो लता मंगेशकर जी ने जो गाया, कल्याण जी आनंद जी का संगीत, क्या कंपोज किया ना, एंड घूमता रहता है बस दिमाग में सुनने के बाद पूरा दिन। एंड रजिंद्र कृष्ण जी ने वो लिरिक्स लिखी, और फिल्म थी 19 कौन से साल की थी, आई एम ट्राइंग टू रिमेम्बर, बनारसी बाबू 1973 की बनारसी बाबू, एंड आई थिंक वी हैव ऑल सीन दैट फिल्म एज वेल, आई थिंक देव साहब नहीं। एंड आगे जाते हुए क्या होने वाला है, यस वी आर गोना रिमेम्बर 53 years, मैं गलती से 50 years बोल गया था, लेकिन इट्स 53 years ago, दैट्स अभिमान फिल्म दैट वॉज रिलीज्ड ऋषिकेश मुखर्जी की, उसके बारे में हम बात करेंगे, एक गाना भी सुनाएंगे, एंड देन हम अमजद खान जी को याद करेंगे। अमजद खान जी की 46th डेथ एनिवर्सरी, नहीं नॉट 46th, what am I talking about? It's the 34th death anniversary of Amjad Khan Sahab, and we are gonna talk about him, and I will tell you as much as I know. आगे जाते हैं हम और सुनते हैं rates.
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: Your £1 in British sterling can get you up to 127.45 Indian rupees. Don't forget to exchange in branch, online or SBI Yono mobile app. TNCs apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
2: Gold Afternoons. Proudly sponsored by Jemin Foods. The authentic taste of India. Dal bhat, pav bhaji, biryani. Bas pet sambhar jo, kyunki cravings badhne wali hai.
3: Location, location, location.
4: In real estate, location is everything, and this one is a winner.
3: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
4: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
3: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
4: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
3: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
4: To book, call our London office on 02039635757. Greens by Danube. Prime location.
3: High appreciation.
4: In Dubai.
5: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए, दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सीइंग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दे डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 02085748410, दैट्स 85748410। साउथ हॉल ट्रेवल at all protected.
6: Anuj Chopra Foundation proudly presents An Evening of Elegance, hosted by Anisa Nasir. Taiyar ho jaiye ek yaadgar shaam ke liye jahan ghazals milti hai Bollywood se.
7: Shaam chalne lage dil mat.
6: With the legendary Anup Chalota on Sunday 30th August at Queen's Theatre, Romford. Doors open 5 PM. Show starts 6 PM. Ticket starts from £40. Book now at queens-theatre.co.uk. Radio partners, Leica Radio Network.

0: एंड देयर इज मिसेस शेख टेलिंग मी, आप कहाँ जा रहे हो? मैं तो चला जिधर चले रास्ता. बोले अभी नहीं जाने दूंगी. हमने बोला नहीं जाने देंगे तो हम नहीं रुक जाते हैं, नेक्स्ट आवर में रुक जाते हैं. थैंक यू वेरी मच फॉर योर वंडरफुल मैसेजेस.
1: फील गुड क्लासिक्स ऑल डे. This is Like a Gold.
2: Bodhik.

0: जो गाना आपने सुना उसके पीछे एक बड़ा अच्छा नाम भी है, वो नाम मैं बाद में कहूंगा, पहले एक छोटी सी कहानी आपको सुना दूं। जकारिया खान, जकारिया खान एक पेशावर में जन्मे हुए, मतलब 15 अक्टूबर 1915 में ये जन्मे थे जकारिया खान, और जन्मे थे पेशावर में। पेशावर इज नाउ इन यू कैन से नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर कहा जाता था पुराने ज़माने में, अब वो पाकिस्तान में खैबर पख्तूनवा उस एरिया का नाम है। वहाँ पे जन्मे हुए जकारिया खान अ पश्तून हु वॉज अ पुलिस ऑफिसर इन अलवर राजस्थान बिफोर स्टार्टिंग फिल्म करियर। एक टॉल, वेरी गुड लुकिंग टॉल मैन विद अ डीप वॉइस। उन्होंने काम किया विजय भट्ट की पहली गुजराती फिल्म संसार लीला 1933 में। विजय भट्ट, याद है ना नो नाम, हु हैड गिवन माह जमीन बानो द नेम मीना कुमारी, ही इज द वन हु चेंज्ड द नेम ऑफ जकारिया खान एंड गेव हिम द नेम जयंत। जी हाँ, जयंत, आपने ये नाम तो काफी फिल्मों में देखा होगा, एस्पेशली हिमालय की गोद में, लीडर, अप्रैल फूल, सगाई, दो रास्ते में खान बने थे, संघर्ष फिल्म में भी थे, और हीर रांझा फिल्म में चौधरी बने थे जो। जी हाँ, जयंत, ही प्लेड लीड रोल इन मैनी फिल्म्स। 1930s में तो लीड रोल करते थे जयंत, बॉम्बे मेल, चैलेंज, फिर हिज हाइनेस, स्टेट एक्सप्रेस जैसी फिल्मों में। अब शादी के बाद उनके दो बेटे जो बहुत मशहूर हुए, पहला नाम इम्तियाज खान का लेता हूँ जो छोटा था, मतलब दोनों बेटों में से द यंग सन। ही इज द हस्बैंड ऑफ कृतिका देसाई। अब दूसरा बेटा जिन्होंने बहुत बड़ा नाम कमाया, वो नाम है अमजद खान। अमजद खान नाम याद है? नाम यही ना याद हो तो मैं याद दिलाता हूं इस ट्रैक से। एक इतना खूबसूरत ट्रैक है जिसके साथ हम इनको याद करते हैं, वो था गब्बर मिक्स। एक बहुत खूबसूरत मेरा ट्रैक बना था विच वॉज नोन एज गब्बर मिक्स, लेकिन मैं इस स्टेशन पे सुना नहीं सकता। उनका लाफ्टर था गब्बर का, गब्बर का लाफ्टर तो इतना फेमस होता था, लेकिन इसमें मैं सुना नहीं सकता। अमजद खान, यस, बॉर्न ऑन 12th of November 1940 में जन्मे हुए इन पेशावर, दैट इज नाउ इन खैबर पख्तूनवा। 27th of July 1992 में ही पास्ड अवे एट द एज ऑफ 51। इनके पिताजी के बारे में मैंने बता दिया, अब अमजद खान के बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं आपको। 132 फिल्म्स इन्होंने काम किया, लेकिन एक फिल्म थी जिसमें बड़े मशहूर हुए थे, एज अ डायरेक्टोरियल डेब्यू इन्होंने किया था। जी हाँ, अमजद खान ने एक फिल्म डायरेक्ट भी की थी, वो थी चोर पुलिस, 1983 की फिल्म, एंड उसमें शत्रुघ्न सिन्हा वॉज द हीरो एंड परवीन बाबी वॉज द हीरोइन। शक्ति कपूर भी थे, कादर खान भी थे, अमजद खान हिमसेल्फ एक्टेड इन द सेम मूवी दैट ही डायरेक्टेड। ये फिल्म का म्यूजिक आर डी बर्मन ने किया था, तो उसमें कल्पना अय्यर भी थी। हाँ, मुझे बहुत लोग पूछते रहते हैं कि कल्पना अय्यर का और अमजद खान का क्या रिश्ता था। अगर आप पूछेंगे वर दे रोमांटिकली इन्वॉल्व्ड, आई वुड से यस। कल्पना अय्यर वॉज वाइडली रिपोर्टेड टू हैव बीन इन अ लॉन्ग टर्म close relationship with Amjad Khan during the 1980s. Though it was the talk of the industry, puri industry mein jankari thi and media mein sab jante the, neither of them publicly confirmed an official romance. Inhone deny kiya tha sab. And Amjad Khan remained married to his wife, Shehla Khan. Now, in dono ki kahani mein kahun, to they worked together on films like the 1980s movie Pyara Dushman. And the gossips column frequently linked them through the 1980s and early 90s. Following Amjad Khan's sudden death in 1992, Kalpana Iyer never got married. And inki dance career bhi khoobsurat thi, Kalpana Iyer ki. Ye film Chor Police jo inhone direct ki thi, usme wo thi. She also acted in this particular film, which was Chor Police, jisme uska naam tha Ruby. Ji haan. Ab Amjad Khan ke baare mein main kahun to, he was active for 41 years, from 1951 to 1992. And at the age of 11, he acted in a film called Nazneen. 17 saal ki umar mein ab Dilli Dur Nahi, usme bhi role hai. Agar ye film mein dekhoge Nazneen aur ab Dilli Dur Nahi, aap Amjad ko dekh sakte hai, Amjad Khan ko. And he assisted K. Asif, Mughal-e-Azam fame wale. K. Asif ko Love and God, late 60s mein. 1973 में हिंदुस्तान की कसम, उसमें स्मॉल रोल, एंड ही डायरेक्टेड चोर पुलिस. जी हाँ, दूसरी फिल्म में अमजद खान की देखा जाए तो इनकार, देश परदेश, नास्तिक, सत्य पे सत्ता, वी ऑल रिमेम्बर हिम इन दोज फिल्म्स, गंगा की सौगंध, एंड हम किसी से कम नहीं, नसीब. उसमें अनकन्वेंशनल रोल अगर देखा जाए तो आपने देखी होगी शतरंज के खिलाड़ी, जिसमें संजीव कुमार थे, एंड इट वाज डायरेक्टेड बाय सत्यजीत रे, एंड ही वाज वाजिद अली शाह ऑफ अवध, एंड ही आल्सो डब्ड अ सॉन्ग इन दैट पर्टिकुलर फिल्म शतरंज के खिलाड़ी, एंड ही वाज अकबर इन मीरा. गुड रोल्स, यस. When he did good roles, people loved him. Yarana, yes, Bhole O Bhole, 1981 ki film. Lavares, 1981. Rocky, 1981. Commander in 1981. Ek art film thi, Utsav, 1984 ki. Usme bhi he was in a good role. And then there were comical roles. Kurbani, Love Story, Chameli Ki Shadi. अब इनके अवार्ड्स देखे जाए, ही वन अ फ्यू फिल्म फेयर अवार्ड्स एज अ बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट. जी हाँ, बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट के अंदर अगर नाम मैं देखूँ फिल्मों के, यू आर गोना से शोले, नहीं, शोले में इन ही गॉट नॉमिनेशन. इजंट इट अ शॉकिंग थिंग टू हियर दैट बेस्ट सपोर्ट का रोल उन्होंने अदाकारी की शोले में, इतना मेजर रोल. 1976 में इनको फिल्म फेयर अवार्ड्स में नॉमिनेशन ही मिली. फिर कुर्बानी में भी नॉमिनेशन मिली 1981 में. लव स्टोरी फिल्म में भी 1982 की, उसमें भी बेस्ट सपोर्ट. एंड बेस्ट कॉमिक उत्सव में जो उन्होंने रोल निभाया था इतना खूबसूरत, उसमें भी इनको नॉमिनेशन मिला. लेकिन कहाँ जीते थे? ओके, फिल्म फेयर बेस्ट सपोर्टिंग अवार्ड उनको मिला था फिल्म दादा 1982 में, याराना फिल्म में ही गॉट द बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का रोल, फिल्म फेयर अवार्ड मिला था. एंड द बेस्ट कॉमिक रोल उनको मिला था माँ कसम 1986 की जो फिल्म थी, उसमें इनको अवार्ड मिला था एज अ बेस्ट कॉमिक. वी आर रिमेम्बरिंग नन अदर देन अमजद खान. अमजद खान on his 34th death anniversary.
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: Your £1 in British sterling can get you up to 127.45 Indian rupees. Don't forget to exchange in branch, online or SBI YONO mobile app. TNCs apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
2: Gemin Foods sponsors Gold Afternoons. From dal bhat, pav bhaji and biryani to namkeen, khakra, chikki, potato chips, mango pulp, pani puri and sweets. Everything delicious. Everything for everyone. Now make your money grow with ICICI Bank UK. Earn up to 4.60% on non-withdrawable fixed deposits.
3: Choose 1 to 3 year tenures and tap to open instantly in-app. Quick, simple and secure. Plus explore savings accounts, bonds and more. All at your fingertips. Start saving today with ICICI Bank UK. ICICI Bank UK PLC is authorized by PRA and regulated by the FCA and PRA. TNC

0: Vegetarians and halal approved. The king of noodles, coca noodles, packets, cups and bowls, now available everywhere in the UK.
1: हाय, मैं हूँ अश्विनी. हर शाम 7 से 10 बजे तक सुनिए मुझे लाइक अ गोल्ड रेडियो लंदन एंड ग्रेटर मैनचेस्टर इन द इवनिंग शो विद अश्विनी. फीचर्स बड़े ही इंटरेस्टिंग अमेजिंग आप सभी के लिए.
2: This is like a gold across Greater London.
3: This super hit song is proudly sponsored by Tilda Basmati Rice. Discover the serious delicious possibilities with Tilda.

0: हर हर शंकर जय शिव शंकर भूषण वल्लभ जय महेश्वर
1: अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु
0: हर हर हर शंकर जय शिव शंकर भूषण वल्लभ जय महेश्वर
1: अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाह अल्लाह
0: हर हर हर हरे
1: अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह
0: हरे हरे हरे हरे
1: अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह
0: हरे हरे
1: अल्लाह अल्लाह
0: हरे हरे
1: अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह हर हर
0: अल्लाह अल्लाह
1: हर हर
0: अल्लाह अल्लाह
1: हर हर
0: अल्लाह अल्लाह
1: हर हर
0: अल्लाह अल्लाह

0: cool music for a super hot summertime on the Leica Radio Network.
1: Okay, Sandy Shah is here. Yippee! And Raj Patan on Leica Radio Midlands. Bari Brambat ka namaskar. I hope you enjoyed the show today. And thank you for all your messages. And kal jo mele mein mujhe mile the, Devendra Soni. उन्होंने जब मुझे कहा कि योर मदर वॉज माई टीचर, तो मैं इतना प्रभावित हुआ उनको मिलकर. एवरीबडी इन साउथहैम्पटन हु मेट मी यस्टरडे, नमस्कार.
2: चेहरे पे गिरी जुल्फे कह दो तो हटा दूं मैं गुस्ताखी.

0: Disha Supreme Extra Long Grain Basmati Rice. Indulge with Disha. Available at all independent stores nationwide.
1: After a sold-out show at the Royal Albert Hall, Diwali Story, The Journey of Ram, a musical, now comes to OVO Arena Wembley. Witness this spectacular live musical on Sunday, the 27th of September. A powerful stage retelling of the Ramayana. Original music, breathtaking dance, grand visuals and storytelling for every generation. Book now on DiwaliStory.com.
2: किटी पार्टी हो या फैमिली का कोई भी ओकेजन हो या फिर बिजनेस रिलेटेड कोई भी गेट टुगेदर,
3: अब हर इवेंट बनेगा स्टाइलिश एट विवेक हाउस गॉडफादर एंड को. स्वादिष्ट साउथ एशियन खाना, 5-course lunch सिर्फ £35, जबरदस्त एम्बियंस और कन्वीनियंट कार पार्किंग अवेलेबल एट हॉलिडे इन वॉटफोर्ड. तो देर किस बात की, बुकिंग के लिए व्हाट्सएप करें 07300998823.
4: Hello London, the wait is over. Kalyan Jewelers invites you to the grand opening of our spectacular new showroom. Join us on Green Street, Upton Park this July 31st. Kalyan

0: भाई जिन्होंने अभी अभी ट्यून इन किया है, आप सभी सुन रहे हैं लाइक अ गोल्ड रेडियो इन लंदन एंड लाइक अ रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर। दिस इज द इवनिंग शो विद अश्विनी। नया वीक, नया दिन, नई सुबह, लेकिन अब शाम हो गई। तो अब हम नए बचे हैं क्या? बिल्कुल बचे हैं, क्यों नहीं, क्योंकि शाम तो नहीं है। पूछें आप सबसे, कैसे हैं आप सब? बढ़िया है ना, मंडे की शाम आ गई, हो गया, रिलैक्स रिलैक्स हो जाओ। मंडे ब्लू ग्रीन येलो सब चले गए अभी। दिस इज द टाइम टू एंजॉय। अटेंडेंस रजिस्टर खुल चुके हैं, सारे के सारे धुरंधर आ रहे हैं, अपनी अपनी अटेंडेंस लगवा रहे हैं। तो आइए अपनी अटेंडेंस लगवाइए और बताइए मुझे कि वीकेंड पे आप लोगों ने क्या क्या किया भाई। हाँ, मैं आप लोगों को सवाल पूछती हूँ कि आप लोग कैसे हैं, वीकेंड क्या किया। आप लोग मुझे पूछते हैं कि वीकेंड कैसा रहा, क्या किया। वीकेंड बड़ा ज़बरदस्त रहा, बड़ा अच्छा रहा। मुसाफिर कैफे नाम की वेब सीरीज़ मैंने देखी, एंड वो था ना कि कोई डिश हमें पसंद आ जाती है। बचपन में हम लोग कैसे करते हैं कि मम्मी ने कुछ बना के डिब्बे में रख दिया है और वो चीज़ पसंद आई, तो दो दिन में सफ़ा चट, वो कहते ना अपने डब्बा चाट पोंछ के रख दिया। वैसे वो वेब सीरीज़ मैंने विद इन 2 डेज़ ख़त्म कर दी। बड़ी अच्छी सीरीज़ है, डेफिनेटली रिकमेंड करूँगी। ओके, तो आज के शो में कोई सवाल पूछेगी अश्विनी? बिल्कुल पूछेगी, एंड लाइफ थ्योरी लेके आई हूँ, बहुत प्यारी लाइफ थ्योरी लेके आई हूँ। तो आज का सवाल क्या है? समर्स जो हैं, एक तो धूप से आप हम ऐसे ही परेशान हैं, ठीक है। कई बार लगता है कि अगर हम बच्चे होते हैं तो कितना अच्छा होता है ना, पर कई बार जो बड़े हैं उनमें जो बचपना बाकी है, या तो इनर चाइल्ड जो बाकी रह गया है, कंग्रेचुलेशंस अगर आप ऐसे हैं तो बहुत अच्छी चीज़ है। क्योंकि कई बार जब लोग निकलते हैं बाहर घूमने के लिए और वो छोटे छोटे से जो फाउंटेन और फवारे होते हैं वहाँ जाके लोग नाच गा के गीले हो जाते हैं, मस्ती करते हैं, तो बढ़िया होता है। आई स्टिल रिमेंबर कि ऐसे तो वो था ना कि कपड़े वॉश करने की ड्यूटी जो है बचपन में कम ही लिया करते थे, बट समर्स में बिकॉज मछली की तरह पानी में खेलने मिलता था ना, सो हमारी मम्मी यूज़ टू आस्क मी, हमारी माई आई यूज़ टू आस्क मी कि आज अभी ये एक्स्ट्रा थोड़े से कपड़े धोने तो कौन धोएगा। सो मी एंड माई यंगर सिस्टर यूज़ टू रेज अवर हैंड्स कि अरे हम आज कपड़े धोएंगे, क्योंकि पानी में खेलने मिलता उस टाइम पे, ऐसा होता था ना। सो ऐसी कोई चीज़ें हैं आपके पास में, ऐसे कोई बचपन की यादें व्हेन इट कम्स टू समर्स, जिसमें पानी में खेलने की कोई भी अगर कोई सिचुएशन मिले, कोई अपॉर्चुनिटी मिले, तो आप लोग उसे छोड़ते नहीं थे। मतलब यहाँ तक कि हमारे यहाँ बजाज का स्कूटर हुआ करता था, सो आई यूज़ टू टेल पापा, पापा मैं गाड़ी भी वॉश कर दूंगी, बिकॉज पानी में खेलने मिलता था। ओके, ऐसी जो भी यादें हैं जरा फटाफट हमें बताइए।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: For £1 you'll get 127.45 Indian rupees, 127 रुपए और 45 पैसे मिलेंगे आपको एक पाउंड के बदले। Don't forget to exchange in branch, online or SBI YONO mobile app. Terms and conditions apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's

0: चलिए मिला लेंगे घड़ियां, देखते हैं टाइम कितना हुआ है, 7:22, इट्स 7:22. आप सभी ने ट्यून इन किया है द इवनिंग शो विद अश्विनी. अब जनरली इस टाइम तक जब हम पहुंच जाते हैं तो आपके लिए लेके आते हैं कोई ना कोई लाइफ थियरी. तो आज कौन सी लाइफ थियरी के बारे में बात करने वाली हूँ? इंटरेस्टिंग है, द पॉपकॉर्न थियरी. तो आप और हम सभी ने पॉपकॉर्न बनते हुए देखा है, शायद घर में अपने यहाँ पे भी, बच्चों के लिए, शायद कभी अपने लिए भी हमने पॉपकॉर्न बनाए हैं. तो जब पॉपकॉर्न के कैनल्स आप डालते हैं कुकर में या फिर आप किसी बर्तन में उसे डालते हैं, तो जो पहला पॉपकॉर्न फुदक के ऐसे बाहर आता है, सो वी गेट सो एक्साइटेड, आई पॉपकॉर्न बनना शुरू हो गया. और कुछ जो भुट्टे के दाने, भुट्टा कहते हैं ना हम उसे हिंदी में, तो कुछ जो भुट्टे के दाने होते हैं वो धीरे धीरे धीरे धीरे उसका पॉपकॉर्न बनना शुरू होता है. और जब पूरे के पूरे पॉपकॉर्न बन के रेडी हो जाते हैं तो उसे देख के बड़ा मज़ा आता है और ऑब्वियसली हम लोग तो पॉपकॉर्न खाना शुरू कर देते हैं. बट अश्विनी, लाइफ थ्योरी क्या है भाई ये तो बताओ. आप, मैं, हमारे आसपास के सारे लोग, हम भी पॉपकॉर्न से कम नहीं. कैसे बताती हूँ. हम सब की ज़िंदगी में अलग अलग टाइम पे अलग अलग अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं और जिसको जैसी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं उस हिसाब से वो इंसान फलता फूलता है एक पॉपकॉर्न की तरह. और बाकी के जो भुट्टे के दाने होते हैं वो देखते रहते कि ओए इसका नंबर तो लग गया, हमारा नंबर कब आएगा. आएगा, धीरे धीरे आएगा. तो ज़िंदगी में हर किसी के लिए, हर टाइम के लिए, एप्ट टाइम के लिए कोई चीज़ बनी है. आपकी ज़िंदगी में जब वो एप्ट टाइम, जो सही टाइम आपके लिए लिखा है ना, उस टाइम पे आप भी फलोगे फूलोगे. लेकिन अपनी मेहनत करना कम ना करें उस टाइम पे, क्योंकि जितनी मेहनत करोगे उसका फल तो मीठा ही होगा, है ना. और जब सब हमारे साथ, हमारे आसपास के लोग भी लाइफ में सक्सेसफुल हो जाते हैं, प्रोग्रेस करते हैं, एक्सेल करते हैं, तो कितनी खुशी होती है. तो पॉपकॉर्न थ्योरी में याद रखिएगा कि हर किसी का जब समय आता है ना, सही समय आता है, जब आप उस चीज़ के लिए तैयार होते हैं तभी वो चीज़ आपको मिलती है. यूनिवर्स, ऊपर वाला आपको यही बताना चाहता है, जब टाइम लगता है किसी चीज़ को पाने में, गिव अप ना करें. आपका टाइम आएगा, अच्छा टाइम आएगा, आपका समय आएगा. पॉपकॉर्न थ्योरी को ज़रूर याद रखिएगा. छोटी सी थ्योरी थी, आई नो अभी पॉपकॉर्न सुन के पॉपकॉर्न खाने की इच्छा तो नहीं होगी. बताइएगा ज़रूर.
1: This is Ashwini on Like a Gold.
2: वॉटफुट में डिनर प्लान्स, थोड़ा क्लासी थोड़ा देसी.
3: तो आइए गॉडफादर एंड को विवेक हाउस बार एंड किचन.
2: फ्रॉम क्रिस्पी स्टार्टर्स, बटर चिकन, पनीर टिक्का मसाला से बिरयानी तक, फ्रेश ब्रेड एंड रिफ्रेशिंग ड्रिंक्स, हर बाइट में लाजवाब फ्लेवर्स और वाइब बिल्कुल प्रीमियम.
3: फ्रेंड्स, फैमिली या स्पेशल नाइट आउट, इसे यादगार बनाइए. विजिट विवेक हाउस वॉटफुट, कॉल 01923227274. बुक योर टेबल टुडे.
4: Bhartiya Vidya Bhavan proudly presents the Summer Showcase 2026 at the iconic Harrow School on Saturday the 8th of August from 3 p.m. Experience an unforgettable celebration of Indian classical music, dance and culture. Seats are limited, so book now at ticketsource.com/Bhavan. For details visit bhavan.net or call or WhatsApp 07421497541. Radio Partners, Leica Radio Network.
5: यार, कभी कभी अपने देश के छोले भटूरे, राज कचोरी और मिठाइयों की बहुत याद आती है.
6: तो फिर इंतजार क्यों? हॉन्सलो एंड साउथ हॉल के बाद अब बीकानेर वाला आ गया है गैंसिल इलफोर्ड में.
5: सच?
6: बिल्कुल, देश का असली स्वाद, लाजवाब मिठाइयाँ और अपनेपन की खुशबू, सब एक ही जगह.
7: आज ही विजिट करें बीकानेर वाला, 513-519 क्रैनबुक रोड, गैंसिल इलफोर्ड, IG2 6HA. कॉल करें 07555-506015. बीकानेर वाला, टेस्ट ऑफ इंडिया नाउ इन इलफोर्ड.
8: Two businesses,
9: same town,
8: same service.
9: One appears on page one of Google,
8: the other doesn't.
9: Guess which one gets the customer?
8: The truth is brutal.
9: The first page of Google gets the business.
8: Everyone else gets what's left.
9: So here's the real question.
8: When your customers search for what you sell, do they find you?
9: Visit heartyhanks.com and stop letting Google choose your competitors.
8: Hearty Hanks, the digital agency that doesn't play safe.
10: No need to fly back home this summer holiday. Come to Ambala and try out our Khoya Barfi, made from pure buffalo milk. Yes, it's the same barfi you get back home. Now made in England with milk from Ambala's own herd of buffalo. Only from Ambala. Don't take our word for it. Come and taste it for free this month. Now also doing the best kara chai, masala chai and elaichi chai. Just like back at home. Ambala, heritage you can taste. Visit ambala.co.uk.
11: Start

0: Good Track, brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: यादों की बारात इस सेगमेंट में आपको लता मंगेशकर की आवाज़ में मधुमती फिल्म से सुनाया घड़ी घड़ी मेरा दिल। इसमें एकदम से जो ढोलक बजता है और जो घुंघरू बजते हैं ना, क्या मज़ा आ जाता है। एंड उसके पहले आप सबको मैंने सुनाया था पिघलता आसमां से तेरी मेरी प्रेम कहानी। वॉट एवर दैट इंस्ट्रूमेंट इज टिंग टिंग टिंग टिंग, आई जस्ट लव दैट एंड दैट इज़ वन ऑफ माई फेवरेट ट्रैक्स। सो पॉपकॉर्न थियरी आप सबको इतनी पसंद आई है कि कम से कम 5 लोगों ने मुझे पॉपकॉर्न के पिक्चर्स भेजे, कहा कि तुमने पॉपकॉर्न के बारे में इतनी बढ़िया बात की। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम ग्लैड कि आप सबको पॉपकॉर्न थियरी पसंद आई है। इट्स ऑल अबाउट पेशेंस, है ना, एक दूसरे को हिम्मत बंधाना। नाउ दिस इज़ अ फैमिली शो, आप और हम हैं म्यूजिकल फैमिली। सो होता है ना ऐसे कि म्यूज़िक सुनेंगे, गपशप करेंगे, लेकिन कभी कभी ऐसा समय आता है कि हमें धीरज की ज़रूरत पड़ती है, हमें हिम्मत की ज़रूरत पड़ती है। एंड चीज़ें हम सबको पता होती हैं, एट दिस एज वी ऑल नो वॉट वी आर डूइंग, वाई वी आर डूइंग और इसके क्या फलस्वरूप होने वाले हैं। बट जब कभी कभी पेशेंस टूट जाता है, जब लगता है कि बस यार थक गया हूँ, थक गई हूँ, एग्जॉस्ट हो गई हूँ, अब मुझसे ये नहीं होगा, तब ऐसी छोटी सी कभी ये रिमाइंडर्स आ जाते हैं ना, तो बड़ा अच्छा लगता है। सो आप चलेंगे आगे, नेक्स्ट ट्रैक जो आपको सुनाने वाली हूँ। किशोर कुमार फैंस तैयार हो जाइए, वॉल्यूम अप करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये गाना तो मध्यम जो एक वॉल्यूम होता है उसमें, घर में हल्का सा डिम लाइट लगा है, एंजॉय करिए। दिस इज़ द इवनिंग शो विद अश्विनी।
3: Like a gold. The evening show with Ashwini.
4: हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सरिता सबरवाल। एवरी वीकेंड 4 till 7 बहुत सी मीठी मीठी बातें आपके साथ शेयर करती हूँ। सैटरडे एंड संडे मेरे साथ ही रहेंगे।
0: Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive. This is Ash Winnie on Like a Gold.
5: travelhubworld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली। फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनी वेयर इन द वर्ल्ड ऑन travelhubworld.com। फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता। कॉल ट्रेवल हब 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट travelhubworld.com।
6: ट्रेवल हब, बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
5: एट ऑल प्रोटेक्टेड।
6: विजिट travelhubworld.com.
7: Experience an unforgettable evening of timeless ghazals. The Prince of Ghazal, the youngest ghazal maestro, Ranjit Rajwara. Performing live in London on Thursday, 30th of July at Harrow Arts Centre. Book your tickets now at harrowarts.com. Leica Radio Network listeners can enjoy 10% off using the promo code Leica Radio. Hurry, limited seats remain for this intimate live concert. Tickets start from just £25. The exclusive Radio partner, Leica Radio Network.
8: Mum, I'm outside. Yes, literally just landed.
9: Wait. How are you calling already? I'm still searching for Wi-Fi.
8: Oh, I'm on Simzy. Downloaded the eSIM back at Heathrow.
9: And you didn't pay those massive roaming charges?
8: Not a penny extra. Just a cheap local data plan. I even kept my UK number for bank alerts.
10: Heading home for the holidays? Skip the roaming drama. Get instant 5G data in India and 100 plus countries. Download the Simzy app today. Simzy, your global flow. T's and C's apply.
11: After a sold-out show at the Royal Albert Hall, Diwali Story, The Journey of Ram, a musical, now comes to OVO Arena Wembley. Witness this spectacular live musical on Sunday, the 27th of September. A powerful stage retelling of the Ramayana. Original music, breathtaking dance, grand visuals and storytelling for every generation. Book now on DiwaliStory.com.
12: Mum always said, beta, clove and neem keep the mouth healthy. Now that same trusted wisdom comes from Baidyanath. Over 100 years of Ayurvedic legacy in Siddhayu toothpaste. Fresh breath, strong gums, pure herbal care. Available at all quality food stores and other leading retail stores across the UK. Siddhayu, Ayurveda that fits your life.
10: sonatours.co.uk, 14 days Canadian Rockies and Alaska cruise in 2027. Book before the end of July and get 600 off. Call Sonatours on 0208-951-0111.
13: Celebrate Krishna Janamashtami in a truly vibrant way. Join us on Sunday the 30th of August from 2 p.m. to 8 p.m. at Navnath Centre, Printing House Lane, Hayes, UB3 1AR. Live music, Ramayan play, Ras Leela, delicious food, fun fair, shopping and free entry with free parking. Book a stall for your business before the 15th of August by calling Ramesh Shah on 07742 045 154. Exclusive radio partner, Leica Radio Network. This ad is sponsored by Jamin Foods.
14: Hello London, the wait is over. Kalyan Jewelers invites you to the grand opening of our spectacular new showroom. Join us on Green Street, Upton Park this July 31st. Kalyan Jewelers, also at Belgrave Road, Leicester.
15: The voice that defined a complete era. The songs that touched millions. She's coming to London. Soon.
0: Leica Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan. Sounding better than ever in the sunshine. This is Leica Gold.

0: Ashwini, brightening up your weeknights.
1: ये है Leica Gold, 10:35 AM.
0: Currency updates are sponsored by Lemfi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
1: For £1, you'll get 127.4 Indian rupee, 369.26 Pakistani rupee, 446.86 Sri Lankan rupee, 164.15 Bangladeshi taka, 88.24 Afghan Afghani, 172.18 Kenyan shilling, 1.32 US dollars, 62.91 Mauritian rupee.
2: Leica Radio.
0: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think Lemfi. Lemfi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code Leica. Download Lemfi now. T's and C's apply.
2: Leica Gold.
0: Gold Rate, brought to you by Pooja Sweets and Savories, PoojaSweets.com, or visitors in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
1: Gold is currently trading at £98.72 per gram.
0: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers, PoojaSweets.com, or visitors at Eastham, Hounslow or Crowley.
1: चलिए एक बार मिला लेंगे घड़ियां, देखते हैं टाइम कितना हुआ है। इट्स 45 मिनट्स पास्ट 7, 27th ऑफ जुलाई, मंडे। आप और हम साथ में मनाने वाले हैं मोटिवेशनल मंडे, दैट इज द सेकंड आवर का फीचर। यादों की बारात आप लोगों ने सुन लिया और अब धीरे धीरे बढ़ रहे हैं आगे। तो लास्ट टू सॉन्ग्स ऑफ दिस आवर आपको मैं सुनाने वाली हूँ। उसके पहले मैंने आपको कहा था कि पानी में मछली की तरह जैसे बचपन में मैं खेलती थी, कि आप भी कैसे खेलते थे। ओ माई गॉड, इतने सारे किस्से कहानियाँ, यू नो दैट्स द रीज़न आई लव दिस इंटरेक्शन। जब मैं आप लोगों रोज एक सवाल पूछती हूँ और कितनी ऑनेस्टी से आप लोग बेपर्दा बिल्कुल मुझे बताते हैं कि आपके एक्सपीरियंसेस कैसे रहे, जब भी जो सवाल आता है। सो बहुत सारी मछलियाँ थी, है ना, बहुत सारा पानी में खेला है सबने। इंटरेस्टिंग। नेक्स्ट गीत आप सबको आशा भोसले की आवाज में, खूबसूरत फिल्म से मस्ती भरा गीत है, वॉल्यूम अप रखिएगा। सुन सुन सुन दीदी।
0: दिस इज अश्विनी ऑन लाइक अ गोल्ड।
3: New world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208 507 7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
4: Most mortgage brokers charge you a fee, but we don't charge you a penny, and we still put cash back in your pocket.
5: Here's how it works. When you remortgage through Cashback Remortgages, the bank pays us a commission. We take our share and we give the rest back to you as cashback.
4: No fee, no gimmicks, real money.

0: मजा आया ना, जरा फनी सा सॉन्ग, मस्ती भरा सॉन्ग। एंड ये वाला गीत 80s के एरा में काफी प्ले होता होगा, जब जब किसी के यहाँ पे किसी का रिश्ता पक्का होता होगा, शादी फिक्स होती होगी तब। तो रेखा पे फिल्माया गया था ये गीत आशा भोसले की आवाज़ में, खूबसूरत, विच वॉज रिलीज इन 1980। ओके, सो पॉपकॉर्न थियरी हैज़ बीन पोस्टेड ऑन माई इंस्टाग्राम, दैट इज रेडियो वाली अश्विनी। अगर आज की थियरी आपके मिस हो गई है तो जरूर रेडियो वाली अश्विनी, दैट्स माई इंस्टाग्राम पेज, जाके आप चेक कर सकते हैं। इस आवर का आखिरी गीत मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में, कश्मीर की कली, विच वॉज रिलीज इन 1964, उस फिल्म से सुना रहे हैं। और यही गीत हमें ले चल रहा है 8 o'clock की न्यूज़ की तरफ। कितना जल्दी ये घंटा निकल गया। नेक्स्ट आवर में गुड न्यूज़ अराउंड द वर्ल्ड, जिसके बारे में कोई बात नहीं करता।
1: लाइक अ कूल, लंदन का नंबर वन एशियन रेट्रो म्यूजिक स्टेशन।

0: वेलकम, दिस इज द सेकेंड आवर ऑफ द इवनिंग शो विद अश्विनी। इस आवर का आगाज हमने किया था दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, इस फिल्म के गीत से, रुक जाओ दिल दीवाने, बड़ा मस्ती भरा गीत था। उदित नारायण, अलका याग्निक और तनिष बागची की आवाज़ में, उसके बाद में अनवर एंड आशा भोसले की आवाज़ में सोनी महिवाल से सुनाया, सोनी मेरी सोनी। फैंटास्टिक ट्रैक्स, बड़े मज़े आए दोनों भी गीत सुन के। आप लोगों के मैसेजेस देख के और भी मज़े आ जाते हैं, जब हर एक गीत के बाद आप लोगों का जो फीडबैक आता है, आहा ओह उफ। यस, एक्चुअली इट हैपेंस। तो गुड न्यूज़ अराउंड द वर्ल्ड, जिसके बारे में कोई बात नहीं करता, लेकिन हम करेंगे अब इस आवर में। तो सेकेंड आवर है 27th of July। भाई जुलाई का महीना ख़त्म ही हो रहा है, दिस इज द 7th month ऑफ द ईयर। तो अपने लिए जो गोल टारगेट्स बनाए थे इस साल, क्या उस डायरेक्शन में आप बढ़ रहे हैं या नहीं, आगे देख लीजिए। जुलाई भी ख़त्म हो रहा है, अगस्त आ रहा है, और समर्स ने जो है हम सबकी फ़िलहाल थोड़ी सी वाट ज़रूर लगा के रखी है, क्योंकि अभी कमिंग डेज भी बहुत गर्मी होने वाली है। अब हाई गर्मी, उफ़ उफ़ गर्मी, ये तो सीज़न अभी चलते रहने वाला है बिकॉज समर्स हैं। तो चलिए हम गीतों के साथ में एंजॉय करेंगे यहीं पे। दिस इज लाइक अ गोल्ड रेडियो इन लंदन एंड लाइक अ रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर, द इवनिंग शो विद अश्विनी।
1: L-Y-C-K Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono Leica. SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: For £1, you'll get 127 Indian rupees or 45 paise. Don't forget to exchange in branch, online or SBI Yono mobile app. Terms and conditions apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's.

0: मिला लेंगे घड़ियां, देखते हैं टाइम कितना हुआ है। इट्स 21 मिनट्स पास्ट 8। आप सभी ने ट्यून इन किया है द इवनिंग शो विद अश्विनी। सो बात करते हैं गुड न्यूज अराउंड द वर्ल्ड, जिसके बारे में पता नहीं वर्ल्ड में कितने लोग बात करें, लेकिन इस शो पे जरूर उसके बारे में बात होती रहती है। सो केनिया में जो केयर गिवर्स हैं जू में जो काम करते हैं, द केयर गिवर्स स्लीप बिसाइड्स जो अनाथ बेबी एलिफेंट्स हैं, उन्हें पास में लेके ये सोते हैं, क्योंकि वो बच्चे जो हैं, वो एलिफेंट के छोटे छोटे बच्चे जो हैं, उन्हें सेफ लगे, कंफर्टेड लगे। मालावी में ए फीमेल विलेज चीफ हैज पुट एन एंड टू मोर देन 3,500 चिल्ड्रन मैरिजेस, गिविंग थाउजेंड्स ऑफ गर्ल्स अ सेकेंड चांस टू गो टू स्कूल। चाइल्ड मैरिज में इतनी छोटी एज में बच्चों की शादियां हो जाती हैं, एंड सीरियसली दे डोंट इवन गेट अ चांस टू गो टू स्कूल। स्पेन में अ ग्रुप ऑफ ग्रैंड मदर्स क्रोशेड जायंट शेड कैनपीज टू हेल्प कीप देयर विलेज कूलर ड्यूरिंग द समर। दिस इज ब्यूटिफुल। अगर आपको ये देखने मिले ना, ये कैनपी जैसे पूरे शहर में उन्होंने कैसे विलेज में लगा रखी है, तो धूप जो है वो स्ट्रीट्स पे एंटर नहीं हो रही है, और इस वजह से जो है वो स्ट्रीट्स ठंडी रहती है। इन जापान ट्रीज आर रिलोकेटेड इंस्टेड ऑफ बीइंग कट डाउन टू मेक वे फॉर न्यू रोड्स। एंड साथ में डेनमार्क में ओल्ड बसेस हैव बीन ट्रांसफॉर्म्ड इनटू मोबाइल ग्रोसरी स्टोर्स सो दैट एल्डरली पीपल लिविंग इन रूरल एरियाज कैन बाय फ्रेश प्रोड्यूस। इन जर्मनी साइंटिस्ट हैव डेवलप्ड अ जेल कैपेबल ऑफ रीजनरेटिंग जॉइंट कार्टिलेज विदाउट द नीड ऑफ इम्प्लांट्स और सर्जरी। सच में सर्जरीज और ये इम्प्लांट्स जो बड़ी बड़ी चीज़ें जहाँ पे एक्चुअली द बॉडी गोज थ्रू अ लॉट किसी भी सर्जरी में, अगर जेल्स के थ्रू भी अगर चीज़ें ठीक होना स्टार्ट हो जाए तो कितना अच्छा, लोग कितनी जल्दी हील होंगे। क्योंकि जब भी सर्जरी ये वर्ड हम कोई भी सुनते हैं तो आधा जो है ब्लड प्रेशर वहीं पे शूट अप हो जाता है सबका, वहीं पे ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, बट ऐसे जेल्स की वजह से भी होता होगा तो कितना क्यूट। एंड ये बेबी एलिफेंट्स वाला वो भी पिक्चर वॉज सो क्यूट, ये छोटे छोटे एलिफेंट्स जो है वो बड़े प्यारे लगते हैं। अच्छा, जब भी आपको लगता है ना कि आपका मूड बेहद ख़राब है, आई वुड सजेस्ट आइदर बेबीज़ के जो पेजेस होते हैं छोटे छोटे बेबीज़ के, या फिर एनिमल्स के पेजेस देखना, जो इंस्टाग्राम हैंडल है वो एनिमल्स के जो हैं वो देखना स्टार्ट कर दो, आप लोग मुस्कुराओगे और आके कहोगे थैंक यू अश्विनी तुमने बताया था।
1: Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
2: Do it for your wife, who told you to pick up bread, but instead you picked up Fred, your grandson, again. And now your daughter is calling because he missed football. That's the fourth time this month. You can wave his future career goodbye. If you don't do it for you, do it for your wife and little Freddy.
3: Book a free test today at bootshearingcare.com and take advantage of our interest-free payment plans. Boots, with you, for life. T's and C's apply.
1: This is Ash Winnie on Like a Gold.
4: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए, दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सींग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाए तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410, दैट्स 8574-8410। साउथ हॉल ट्रेवल ऑटो प्रोटेक्टेड।
5: श्रावण के पवित्र महीने में करें भगवान शिव की आराधना। परम पूज्य संत श्री चिन्मयानंद बापू जी के श्रीमुख से सुनिए श्री शिव महापुराण कथा 13 अगस्त से 19 अगस्त तक हिंदू सनातन मंदिर ईलिंग रोड वैमली में। समय दोपहर बाद 3 बजे से शाम 7 बजे तक। नित्य कथा और महाप्रसाद की पावन व्यवस्था का आनंद लें। शिव महापुराण का अपने पूर्वज माता पिता के नाम से मूल पाठ, डेली यजमान और सेवा के लिए संपर्क करें 07930271।
6: Dad!
7: What's wrong, beta?
6: The Indian rupee has skyrocketed and it's the best time to send money to Daddy in India.
7: I will run down to the money exchange now.
6: No, Dad, you can do it from your sofa. Download the Yono SBI UK mobile app and you'll get a fast service right from your phone.
7: Oi, bale bale. I'm going to tell all my friends to download the Yono SBI UK mobile app and take advantage of their competitive rates.
6: SBI UK regulated by the FCA and PRA.
8: London, are you ready? Raghavendra presents to you for the first time legend Udit Narayan and son Aditya Narayan performing live with Bade Mia Chote Mia this December.
9: Main nikla o gatti leke
8: one date, one show, Sunday the 20th of December at the Ovo Arena, Wembley, London. Tickets available now at Ticketmaster and AXS. Visit raga.events. Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
9: Ilford, अब असली इंडियन फ्लेवर्स का मजा लीजिए.
10: परंपरा भी फेमस छोले भटूरे, राज कचौरी, मिठाई और बहुत कुछ आपका इंतजार कर रहा है. मिलते हैं 513-519 क्रैनब्रुक रोड, गैंसिल, इल्फोर्ड, IG26HA. कॉल 07555-506015.
11: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका. अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत. 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड. और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी. तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 020-8150-2025 और विजिट meraboiler.com. T's and C's apply.
1: Like a Gold, officially London's number one Asian retro music station. Available in Greater London on 10:35 AM, DAB Digital Radio, Alexa and likeagold.com. Feel Good Track, brought to you by Dairy Valley.
12: Soft and tender, like grandma's warm hug, Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: Good Track, brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
0: This is Leica Gold, making summer feel better on the Leica Radio Network. ये है लाइका गोल्ड।
2: अब होगा वीकेंड और भी सुहाना द रितु शर्मा शो में एवरी वीकेंड 10 AM टू 1 PM ऑन लाइका गोल्ड रेडियो, लाइका रेडियो ग्रेटर मैनचेस्टर एंड लाइका रेडियो मिडलैंड्स पर।
0: इमोशन ऑफ द डे,

0: इमोशन ऑफ द डे लाइक एक्स्ट्रा पॉडकास्ट अपडेट।
1: पॉडकास्ट एपिसोड 26 आ चुका है, द रीइन्वेंशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप। दीप राजा स्पीक्स टू मीनल सांबरे फ्रॉम समारिया ग्लोबल फाइनेंस एंड इनसाइट इनटू बैंकिंग सेक्टर। लाइका एक्स्ट्रा पॉडकास्ट अवेलेबल ऑन स्पॉटिफाई, यूट्यूब, अमेजन, एप्पल एंड अदर मेजर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स।
0: लाइका एक्स्ट्रा इज हियर।
1: चलिए मिला लेंगे घड़ियां, एक बार देखते हैं टाइम कितना हुआ। इट्स 38 मिनट्स पास्ट 8। आप सभी ने ट्यून इन किया है लाइका गोल्ड रेडियो इन लंदन एंड लाइका रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर। दिस इज द इवनिंग शो विद अश्विनी। छोटी छोटी काइंडनेस वाली एक्ट जो है ना, किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट ला सकती। तो एक मैंने क्लिप आज सुबह देखी और वो मुझे देख के मुझे एक्चुअली इतनी मेरे चेहरे पे स्माइल आ रही थी ना। एक बस ड्राइवर है यूएस में, वो जो येलो बसेस होती ना, स्कूल बसेस, सो ये बस ड्राइवर जो है एक चौराहा नहीं कहेंगे उसे, एक राउंड अबाउट है जिस पे वो अपनी बस 2-3 बार घुमाते हैं, क्योंकि उस बस में बैठे सारे बच्चों को बड़ा मजा आता है जब उस राउंड अबाउट पे बस गोल गोल घूमती है। इट्स नॉट एन बिजी राउंड अबाउट, इसके पहले कि कोई कुछ कहे ऐसे कैसे राउंड अबाउट पे गाड़ी घुमा रहा है, तो ऐसे कुछ नहीं है। बट बच्चे जो हैं उस बस में इतने मुस्कुराते हैं क्योंकि उन्हें अच्छा लगता है, एंड दे हैव रिक्वेस्टेड द ड्राइवर। छोटी छोटी चीज़ें, किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट लाना, ओ माय गॉड, आई एम श्योर शायद थोड़ा पुण्य मेरे पास में भी आ जाए। आप लोग मुस्कुरा रहे हैं ना ये शो सुनते हुए।
0: दिस इज अश्विनी ऑन लाइक अ गोल्ड। travelhubworld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली। फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन travelhubworld.com। फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता। कॉल ट्रेवल हब 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट travelhubworld.com।
2: ट्रेवल हब, बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
0: एट ऑल प्रोटेक्टेड।
2: विजिट travelhubworld.com।
3: Location, location, location.
4: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
3: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas.
4: Located in Dubai, in a prime location for high appreciation.
3: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
4: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
3: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
4: To book, call our London office on 0203963-5757. Greens by Daniel. Prime location,
3: high appreciation
4: in Dubai.
5: भजन फिनोमिनन अब लंदन में धमाके करने आ रहा है। बैकस्टेज सिबलिंग्स परफॉर्म लाइव फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन द यूके। जॉइन द पायनियर्स ऑफ भजन जैमिंग ऑन फ्राइडे द 9th एंड सैटरडे द 10th ऑफ अक्टूबर एट SKLPC नॉर्थोल्ट। एक शाम सोलफुल म्यूजिक, डिवोशन और एनर्जी के नाम। टिकट्स बुक कीजिए ऑन SKLPC.com/BSS। एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर्स लाइका रेडियो नेटवर्क।
6: खाकरा क्रंच, भाकरी मंच, चिक्की स्वीट, पापड़ बीट, पिकल्स हीट, ये है जयमिन फूड्स का वाइब चेक।
7: एड देसी तड़का टू योर रूटीन विद जयमिन फूड के वैरायटी ऑफ स्नैक्स, खाकरा, नमकीन, पापड़, पिकल्स, चिक्की, पॉट मील्स एंड मच मोर।
6: जयमिन फूड्स देसी क्रेविंग्स अवेलेबल एट नियरेस्ट एथनिक ग्रोसरी स्टोर्स।
8: Experience an unforgettable evening of timeless ghazals. The Prince of Ghazal, the youngest ghazal maestro, Ranjit Rajwara, performing live in London on Thursday, 30th of July at Harrow Arts Centre. Book your tickets now at harrowarts.com. Leica Radio Network listeners can enjoy 10% off using the promo code Leica Radio. Hurry, limited seats remain for this intimate live concert. Tickets start from just £25. The exclusive radio partner Leica Radio Network.
9: sonatours.co.uk Japan Cherry Blossom Tour in March and April 2027. Book before the end of July and get up to 400 off. Call Sona Tours on 0208-951-0111.
10: When your husband's got his heart set on making the doer-upper open plan, enjoy every thudding second of it.
11: Yes!
10: Be a step ahead with Barclays Premier, with our exclusive mortgage rates. Barclays, backing your future. Eligibility criteria apply. All mortgages are subject to application, financial circumstances and borrowing history. T's and C's apply. New Barclays mortgage applications only.
0: Leica Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan.
12: of the conversation. Details at LaikaRadio.com and the Laika Radio mobile app. Ashwini, brightening up your weeknights.
13: दीवाना
14: एक दीवाना शहर में
13: एक दीवाना नहीं एक दीवानी भी

0: Bangladesh, then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKA. Download LemFi now. T's and C's apply. Gold Rate, brought to you by Pooja Sweets and Savories, poojasweets.com, or visit us in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
1: Gold is currently trading at £98.72 per gram.
0: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers, poojasweets.com, or visit us at East Ham, Hounslow or Crowley.
1: What a fantastic track. घरंदा फिल्म से सुनाए आप सभी को भूपेंद्र सिंह एंड रूना लैला की आवाज में दो दीवाने शहर में. इस गीत के जो लिरिक्स है ना, आसमानी है आसमानी एंड ओ माय गॉड आबूदाना साबूदाना. आई स्टिल रिमेंबर बचपन में वी यूज टू से आर दे टॉकिंग अबाउट साबूदाना, यू नो साबूदाना खिचड़ी. मोस्ट ऑफ द पीपल स्पेशली महाराष्ट्रियन पीपल्स वी आर अ बिग फैन ऑफ साबूदाना खिचड़ी. मैं आबूदाना से साबूदाना पे कैसे चली गई, बस राइमिंग वर्ड्स से इसलिए है ना. जिन्होंने अभी अभी ट्यून इन किया है, आप सभी सुन रहे हैं लाइका गोल्ड रेडियो इन लंदन एंड लाइका रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर. दिस इज द इवनिंग शो विद अश्विनी. मंडे से फ्राइडे तक रहता है आपका मेरा साथ, शाम 7 बजे से लेके 10 बजे तक. तो आप सबको हमने मोटिवेशनल मंडे में ए जिंदगी गले लगा ले ये वाला गीत सुनाया था, क्योंकि कभी कभी लगता है जिंदगी गले लगा ले कुछ अच्छी अच्छी बातें भी सुना दे, है ना. इस आवर का आखिरी गीत जाते हो जाने जाना आप सबके लिए.
0: Like a Gold, officially London's number one Asian retro music station. This is Ashwini on Like a Gold. Like a
2: Gold. Discover unique Grand Prix holidays with flights, race tickets, and hand-picked stays. Combine iconic motorsport weekends with city breaks, beach escapes, or even cruise experiences for the ultimate getaway. Prices start from just £799 per person. Visit skylordcruiseandholidays.com or call 0192 388 3100. Atoll protected.
3: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं. परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं. 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए. फॉरन का फोन मिलाए 02088390880 और विजिट ragasan.com. लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन.
4: अनुज चोपड़ा फाउंडेशन प्राउडली Presents an evening of elegance hosted by Anisa Nasir. तैयार हो जाइए एक यादगार शाम के लिए जहां गजल्स मिलती है बॉलीवुड से.
5: शाम चलने लगे दिल मच.
4: With the legendary Anoop Chalota on Sunday 30th August at Queen's Theatre, Romford. Doors open 5 PM. Show starts 6 PM. Ticket starts from £40. Book now at queens-theatre.co.uk. Radio partners Leica Radio Network.
6: No need to fly back home this summer holiday. Come to Ambala and try out our Khoya Barfi, made from pure buffalo milk. Yes, it's the same barfi you get back home, now made in England with milk from Ambala's own herd of buffalo. Only from Ambala. Don't take our word for it. Come and taste it for free this month. Now also doing the best kara chai, masala chai and elaichi chai. Just like back at home. Ambala, heritage you can taste. Visit ambala.co.uk.
7: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208 507 7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
8: Minar Jewelers, best independent retailer 2026. Come and find out why. Best jewelry for the bride and groom. Phone 0208 767 7547.
9: बजट टाइट पर ब्रांड का इम्पैक्ट बड़ा चाहिए. लाइका रेडियो और लाइका गोल्ड लाए हैं आपके लिए परफेक्ट पैकेज. रेडियो, डिजिटल या इवेंट, सब कुछ मिलेगा कस्टमाइज्ड. जल्दी करिए, कॉल नाउ 0207 132 1458 या लिखे

वेलकम, दिस इज द थर्ड आवर ऑफ द इवनिंग शो विद अश्विनी। मोटिवेशनल मंडे मना चुके हैं हम सेकेंड आवर, लेकिन आज के दिन को हम कहते हैं मोटिवेशनल मंडे। 9:13 बम्बई से गई पूना, पूना से गई दिल्ली, लेकिन कहीं पे भी हो भाई, अब हम हैं यहाँ पे लंदन शहर में। अलका याग्निक की आवाज़ में हमें राही प्यार से सुनाया आप सभी को ये गीत। 1993 में ये फिल्म रिलीज हुई थी, तो 90s के बच्चे हो गए खुश, 80s के बच्चे हो गए खुश। आशा भोसले की आवाज़ में सुनाया प्यार करने वाले, शान फिल्म से सुना था आप सभी ने ये गीत। गजल या कवाली मैं क्या सुनाने वाली, बिल्कुल लिख के भेजिए। ओके, सो 27th of July मतलब किसी का बर्थडे, किसी की एनिवर्सरी। आज दिन स्पेशल होगा कि क्योंकि किसी को नौकरी मिली होगी। आज का दिन किसी के लिए सैड हो सकता है क्योंकि किसी की नौकरी गई होगी। किसी के लिए न्यूट्रल डे होगा, हाँ भाई मंडे आया गया चलो ठीक है। लेकिन आज के दिन और भी बहुत सारी चीज़ें मनाई जाती है। नेशनल स्कॉच डे मनाया जाता है, नेशनल चिकन फिंगर डे, नॉरफॉक डे, उसके साथ ही नेशनल लव इज़ अ काइंड डे, नेशनल मरीन वीक एंड नेशनल कोरियन वॉर वेटरन्स डे। सबसे इंटरेस्टिंग मुझे जो लगता है वो है स्लीपी हेड डे। सो हर फैमिली में एक ऐसा इंसान होता है जो सोने में इतना माहिर होता है कि इफ़ वी ऑल नो कि भाई एक कैरेक्टर हमारे यहाँ पे रह चुके हैं माइथोलॉजी में, जहाँ पे 6 महीने वो सोते थे। कोई भी लंबा सोता है तो फिर उस पर्टिकुलर कैरेक्टर के साथ में हम उसे रिलेट कर लेते हैं। सो सोना यानी इतनी अपार नींद कुछ लोगों को अच्छी लगती है। एंड दिस एक्चुअली स्लीपी हेड डे, मैं जब इसके बारे में पढ़ रही थी तो मैं खूब हंस रही थी अकेली यहाँ पे स्टूडियो में, इसलिए बिकॉज माई यंगर सिस्टर व्हेन वी वर किड्स, ऑब्वियसली अब तो नहीं, व्हेन वी वर किड्स तो वो बहुत सोती थी। और हमारे घर में रूल ऐसा था कि जो बच्चा सबसे लेट उठेगा वो सारे बेडिंग्स फोल्ड करके अच्छे से ठीक से बेड लगाएगा। तो हम लोग जितने भी सिबलिंग्स, हम लोग सारे के सारे जो वेडिंग्स हुआ करते थे, तो जो रजाइयाँ हुई करती थी, वो सब जाके हमारी छोटी बहन के ऊपर डाल देते कि अरे इसको इतना ठंड लग रहा होगा, ठंड लग रहा होगा, बिकॉज वी वर लेजी डेफिनेटली। और मम्मी ने रूल बना के रखा था कि जो लेट उठेगा वो सारी वेडिंग्स ठीक करेगा। माई सिस्टर यूज़ टू वेक अप एंड शी इज़ लाइक वाह रे वाह, इस घर में इतना लाड़ प्यार मुझे मिलता है, आई होप मुझे इतना लाड़ प्यार आगे भी मिले। एंड शी यूज़ टू कीप ऑन फोल्डिंग द बेडिंग्स। सो स्लीपी हेड डे से मुझे वो चीज़ याद आई, एंड आई एम लाइक आई एम श्योर आपके भी घर में ऐसे कोई स्लीपी हेड होगा और आपके यहाँ पे भी ऐसे कुछ रूल्स रेगुलेशन होंगे, तो स्लीपी हेड को आपके यहाँ पे कैसे जगाया जाता है? अरे यार, हर घर में जब किसी को जगाना होता है तो तरीके अलग अलग होते हैं। Ashwini, brightening up your weeknights. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch. एक पाउंड के बदले आपको मिलेंगे 127 इंडियन रुपी एंड 25 पैसे। डोंट फॉरगेट टू एक्सचेंज इन ब्रांच ऑनलाइन और एसबीआई यूनो मोबाइल ऐप। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's.

0: What a beautiful track. अभिमान, which was released in 1973, उस फिल्म से किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज में ये ठहराव वाला गाना आप सबको सुनाया. कुछ गीत ऐसे होते हैं ना जहाँ पे एक्चुअली हम लोग रुक जाते हैं, मतलब मेंटली भी हम लोग रुकते हैं उस गाने के साथ में, उस गाने को महसूस कर लेते हैं. जिस तरीके से शब्द लिखे गए, जैसा म्यूज़िक उसे दिया गया, जिस तरीके से कम्प्लीटली ये सॉन्ग कंपोज किया गया और जो आवाज़ें उस गाने में हमें सुनाई देती है, गीतों के साथ में हम लोग रिलेट करते हैं. कुछ गीत तो लगता है जैसे हमारे लिए ही बने हैं. एंड दिस वॉज सच अ ब्यूटिफुल ट्रैक ऑफ ब्यूटिफुल रिलेशनशिप विच पीपल हैव इन लाइफ. ऐसा नहीं कि लोगों के लाइफ में अच्छी और प्यारी रिलेशनशिप्स नहीं है, जी दे आर ब्लेस्ड. किसी भी रिलेशनशिप में दो लोग होते हैं, दो अलग अलग सिचुएशंस होती हैं, दो अलग अलग अपब्रिंगिंग होती है. कहीं इफ़ यू जस्ट बिल्ड अ ब्रिज बिटवीन टू पीपल, आई बिलीव रिलेशनशिप काफ़ी अच्छी रहेगी, है ना? आपको क्या लगता है? एंड आर्टिस्ट ऑफ द वीक येसुदास, उन्हीं के फिल्म से चित्तौड़ से आप सबके लिए ये गीत.
1: Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
2: Do it for your wife, who told you to pick up bread, but instead you picked up Fred, your grandson, again. And now your daughter is calling because he missed football. That's the fourth time this month. You can wave his future career goodbye. If you don't do it for you, do it for your wife and little Freddy.
3: Book a free test today at bootshearingcare.com and take advantage of our interest-free payment plans. Boots, with you, for life. T's and C's apply.
1: This is Ash Winnie on Like a Gold.

0: Southall Travel invites you to the beautiful city of Dubai. Enjoy the great shopping experience, luxury hotels, water sports, golf courses, Gold Souk, desert safaris and Dhow Cruise. There's never been a better time to go to Dubai.
1: Call 0208 574 8410. 0208 574 8410.
2: Southall Travel, Atoll Protected. Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208 507 7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries, and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
3: यूरोप और यूके के सपने देख रहे हैं तो मंत्रा हॉलीडेज के साथ ट्रैवल कीजिए. दिल की धड़कनें बढ़ा देने वाले स्कॉटिश हाइलैंड्स, स्नोडोनिया के अफसानवी लैंडस्केप्स और स्टनिंग कोस्ट ऑफ कॉर्नवॉल को एक्सप्लोर कीजिए. आपका सफर होगा मैजेस्टिक स्विस एल्प्स से लेकर रोमांटिक पेरिस और टाइमलेस ब्यूटी ऑफ इटली के थ्रू.
4: विजिट mantrahalidays.co.uk और कॉल 0203 7736333 नाउ. एप्टा बॉन्डेड मंत्रा हॉलीडेज. व्हाट्स योर Travel Mantra.
5: Are you sitting on a mortgage and getting nothing back? What if your remortgage paid you?
6: At Cashback Remortgages, we find you deals that put real money back in your pocket. Not just a lower rate, but actual cash. Hundreds, sometimes thousands of pounds just for switching.
5: Our expert advisors have helped thousands of homeowners across the UK remortgage smarter and walk away richer.
6: Call us today on 0208 706 0915. That's 0208 706 0915. Or visit cashbackremortgage.co.uk.
5: Cashback Remortgages. Your mortgage should work for you.
7: श्रावण के पवित्र महीने में करें भगवान शिव की आराधना. परम पूज्य संत श्री चिन्मयानंद बापू जी के श्रीमुख से सुनिए श्री शिव महापुराण कथा. 13 अगस्त से 19 अगस्त तक हिंदू सनातन मंदिर ईलिंग रोड वैमली में. समय दोपहर बाद 3 बजे से शाम 7 बजे तक. नित्य कथा और महाप्रसाद की पावन व्यवस्था का आनंद लें. शिव महापुराण का अपने पूर्वज माता पिता के नाम से मूल पाठ, डेली यजमान और सेवा के लिए संपर्क करें 07930271.
8: The voice that defined a complete era. The songs that touched millions. She's coming to London soon.
9: Like a goal. लंदन का नंबर वन एशियन रेट्रो म्यूजिक स्टेशन अब अवेलेबल है ग्रेटर लंदन में 10:35 AM पर DAB डिजिटल रेडियो पर. एलेक्सा पे बोलो प्ले लाइक अ गोल्ड और ऑनलाइन सुनो likeagold.com पे.
10: Artist of the week is brought to you by our new podcast Like a Extra. Stream it now and be a part of the conversation.

0: emergency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
1: For £1, you'll get 127.31 Indian rupee, 369.16 Pakistani rupee, 446.7 Sri Lankan rupee, 164.04 Bangladeshi taka, 88.32 Afghani, 172.15 Kenyan shilling, 1.32 US dollars, 62.89 Mauritian rupee.
2: Leica Radio.
0: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LEICA. Download LemFi now. T's and C's apply. Listen wherever you are by downloading the LEICA Radio mobile app now. Gold Rate, brought to you by Pooja Sweets and Savories, PoojaSweets.com, or visitors in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
1: Gold is currently trading at £98.72 per gram.
0: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers, PoojaSweets.com, or visitors at Eastham, Hounslow or Crowley.
1: चलिए मिला लेंगे घड़ियां, देखते हैं टाइम कितना हुआ है। इट्स 43 मिनट्स पास्ट 9। आप सभी ने ट्यून इन किया है LEICA गोल्ड रेडियो इन लंदन एंड LEICA रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर। दिस इज द इवनिंग शो विद अश्विनी। अब मंडे से फ्राइडे आप हर रोज ही मुझे सुनते हैं शाम 7 से 10 बजे तक, और हर दिन को हमने बना रखा है स्पेशल मोटिवेशनल मंडे, टेरिफिक ट्यूजडे, फील गुड वेंसडे, थ्रिलिंग थर्सडे, फैंटास्टिक फ्राइडे। सो कल आप और हम साथ में मनाएंगे टेरिफिक ट्यूजडे। परफेक्ट ट्यूजडे सुन के सकते हैं पता नहीं कौन सा गीत आएगा। अब कल कौन सा गीत आएगा वो तो आप सुनेंगे। साथ ही बता दें आपको गोल्ड नाइट ओवरनाइट सर्विसेज ज़रूर सुनिएगा। काम कर रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, झगड़ा हो चुका है, नींद नहीं आ रही, गोल्ड नाइट सर्विस लगा लीजिए, बड़े अच्छे गीत होते हैं। LEICA गोल्ड 2 भी हमारे पास में है, LEICA रेडियो 90s, LEICA रेडियो पंजाबी। सुबह सवेरे आएगी हमारी प्यारी प्यारी काजल, उनका ज़रूर साथ दीजिएगा। और मैं तो मिलने वाली हूँ आपसे कल, लेकिन उसके पहले जो दो गीत आखिरी आपको सुनाने वाली हूँ इस आवर में, महबूब की मेहंदी से पसंद आ गई मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में, एंड लास्ट होगा हम किसी से कम नहीं इस फिल्म की कव्वाली। यस, टुडे इट्स मंडे तो मैं आप सबको सुना रही हूँ कव्वाली। सुनिएगा, एंजॉय करिएगा, एंड हमेशा की तरह इतना ही कहेंगे भाई ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, प्लीज़ उसे कॉम्प्लिकेटेड ना बनाएं। प्यार कितनी सुंदर फीलिंग है, प्यार दो प्यार लो, है ना। एंड पावर तो किसी को बर्बाद करने के लिए चाहिए, एंड आई एम श्योर आप में से कोई भी पावर का यूज़ नहीं करता होगा, बिकॉज वी आर अ म्यूजिकल फैमिली। सो अपना खूब ख्याल रखिएगा, दिस होल वीक इट्स गोइंग टू बी रियली हॉट, अपने आप को हाइड्रेटेड रखिए। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।
3: ये है LEICA गोल्ड। This superhit track is brought to you by Tilda Basmati Rice. With a range of grains and flavors from around the world, you can make every meal memorable.

0: Cycle Radio Network across London, Manchester, and the Midlands. Hare
1: Krishna. Celebrate Krishna Janamashtami in a truly vibrant way. Join us on Sunday, the 30th of August from 2 pm to 8 pm at Navnath Centre, Printing House Lane, Hayes, UB3 1AR. Live music, Ramayan play, Ras Leela, delicious food, fun fair, shopping, and free entry with free parking. Book a stall for your business before the 15th of August by calling Ramesh Shah on 07742 045 154. Exclusive radio partner, Leica Radio Network. This ad is sponsored by Jamin Foods.
2: Experience an unforgettable evening of timeless ghazals. The Prince of Ghazal, the youngest ghazal maestro, Ranjit Rajwara. Performing live in London on Thursday, 30th of July at Harrow Arts Centre. Book your tickets now at harrowarts.com. Leica Radio Network listeners can enjoy 10% off using the promo code Leica Radio. Hurry, limited seats remain for this intimate live concert. Tickets start from just £25. The exclusive radio partner, Leica Radio Network.
3: यूरोप और यूके के सपने देख रहे हैं तो मंत्रा हॉलीडेज के साथ ट्रेवल कीजिए. दिल की धड़कने बढ़ा देने वाले स्कॉटिश हाईलैंड्स, स्नोडोनिया के अफसानवी लैंडस्केप्स और स्टनिंग कोस्ट ऑफ कॉर्नवॉल को एक्सप्लोर कीजिए. आपका सफर होगा मैजेस्टिक स्विस एल्प से लेकर रोमांटिक पेरिस और टाइमलेस ब्यूटी ऑफ इटली के थ्रू.
4: विजिट मंत्रा हॉलीडेज .co.uk or call 02037736333 now. APTA bonded. Mantra Holidays. What's your travel mantra?
5: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए. दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सींग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम. साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे. तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग. कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 02085748410. दैट्स 85748410. साफो ट्रेवल.
6: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका. अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत. 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ 1890 पाउंड से पूरी तरह फिटेड. और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी. तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 02081502025 और विजिट meraboiler.com. T's and C's apply.
7: When you go abroad, everyone knows the best way to make yourself understood is to say everything in English but louder.
8: 4 beers, please, garçon!
7: Just like when you amplify your advertising with radio. 40 million listeners every week get the message. See radio differently at radiocentre.org.
9: Like a gold par har raat ki yahi reet. Purane magar sada bahar geet.

0: Pembrokeshire Radio Network, across London, Manchester and the Midlands.
1: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए, दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सींग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाए तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410, दैट्स 8574-8410।
2: साउथ हॉल ट्रेवल, at all protected.
3: Location, location, location.
4: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
3: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
4: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
3: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
4: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
3: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
4: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Daniel. Prime location,
3: high appreciation
4: in Dubai.
5: सारी रात Bollywood classics का साथ, सिर्फ Laika Gold पर.